0: সর্বোচ্চভাবে হিন্দি রচনাটা দিল্লি কেন্দ্রে থিয়েটার ডেকোরেশন
1: ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्वदेश में निर्मित 3 युद्धपोत द्वारागिरी अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तर वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना की क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमरीका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्यवाही कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4थे स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त।

की आसुरी सेना का काया विनाश हो चुका है। श्री राम और रावण का युद्ध सन्निकट है। रावण अपने बंधु बांधवों खर दूषण विराट बाली आदि योद्धाओं का वध करने वाले तपस्वी को ललकार रहा है कि वो उन जैसा नहीं है। वो जगत प्रसिद्ध रावण है जिसका बल और पराक्रम अनंत है। हे तपस्वी, आज तुम यदि युद्ध से भाग नहीं गए तो मैं अपना सारा वैर निकाल लूंगा। तुमने मेरे मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी वध किया है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हारा पाया रावण से बड़ा है। श्री राम ने उसे ललकारा कि व्यर्थ की बकवास न कर, अब वो अपना पराक्रम और पौरुष दिखाए। बोले, संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, गुलाब आम और कटहल की तरह। एक केवल फूल देते हैं, दूसरे फूल और फल दोनों देते हैं, और तीसरे प्रकार के पुरुष कटहल के समान केवल फल देते हैं। इसी प्रकार एक केवल दीन भागते हैं, दूसरे कहते और करते हैं, और तीसरे केवल करते हैं कहते नहीं। श्री राम की इस उक्ति से क्रुद्ध होकर रावण ने वाण छोड़ना प्रारंभ किया, किंतु श्री राम के अग्नि वाण से भी भस्म होते गए। रावण के एक वाण से अपने सारथी को आहत होता देख श्री राम ने क्रोध में आकर अपने धनुष पर टंकार की, जिसका नाद सुनकर महल में मंदोदरी तथा अन्य रानियों के हृदय कांप गए। समुद्र पर्वतों तथा पृथ्वी पर चारों ओर भय और आतंक व्याप्त हो गया।

सी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।

0: इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रूपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रूपये की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और पिछल करंजी के दौरे पर है। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमेरिका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों और ऋण लेने वालों के बीच साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने डूबे ऋण को निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि बैंक करदाताओं के पैसे ऋण के रूप में दे रहे हैं लेकिन वसूलने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। अदालत ने जनता के पैसे के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग जनकल्याण में होना चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5,36,00,000,00,000 मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की भारत के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर भाला फेंककर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news with Bhavanesh Babu. Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal from today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Paharpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the President's 68th birthday. The President and Prime Minister will visit Koharpur and offer prayers at sacred groves from Thali Jahira and Ho Jahira Skill Center and Koharpur School. Later, they will participate in a program at Rangpur in Mayurabhanj District, marking the completion of 2 years of the Mohan Chan Maji-led state government. During the program, they will inaugurate and lay the foundation stones of various development projects worth over 47,000 crore rupees. During his 2-day visit to West Bengal, the Prime Minister will participate in Paschim Banga Divas West Bengal Day celebrations at Tarakeshwar in Hooghly District today. He is also scheduled to launch, dedicate to the nation, and lay the foundation stones of multiple development projects in West Bengal. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. In this, senior bureaucrat Vivek Agarwal has been selected as the next Vice President of the Financial Action Task Force, FATF, for the 2026-27 term. He will succeed Giles Thompson of the United Kingdom. Mr. Agarwal, currently serving as Secretary in the Ministry of Culture, earlier headed the Indian delegation to the FATF and played a key role in India's engagement with the Global Anti-Money Laundering and Counter-Terror Financing Watchdog. The decision was made during the FATF plenary held from 17th to 19th June. The Ministry of External Affairs has stamped Mr. Agarwal's selection a major win for India. In a social media post, the ministry spokesperson Ranveer Jaiswal said, "The appointment reinforces India's relentless focus on combating global terrorist financing networks and dismantling illicit financial systems." The National Testing Agency, NTA, has said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Common Interest Test, NEET UG 2026, re-examination, which is scheduled for tomorrow. In a statement, NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The agency noted more than 2 lakh personnel, including observers, coordinators, police forces and administrators, have been deployed. The Securities and Exchange Board of India, SEBI, has approved a series of reforms aimed at improving market efficiency, easing compliance requirements and strengthening regulatory frameworks across the financial sector. At the 214th meeting of SEBI held in Mumbai yesterday, the SEBI board simplified the transmission of securities for legal heirs and claimants bearing the name of deceased investors. The decision was taken to introduce a new quick transmission processing category for small value claims to enable faster processing with reduced documentation. The regulator has also enhanced simplified documentation limits, removed mandatory plan submission in certain cases, and accepted QR code-enabled death certificates to ease verification. SEBI has also approved the reintroduction of open market share buybacks through stock exchanges from 1st August this year with revised timelines and stricter compliance norms. The board has also allowed mutual funds to undertake intraday borrowings to manage temporary liquidity mismatches. The Supreme Court has expressed serious concern over what it described as a deep-rooted nexus between banks, asset reconstruction companies and borrowers, questioning the manner in which large loan defaults are being settled. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice B. Mohan observed that public money collected from taxpayers is being lent through banks, but effective efforts are often not made to recover these dues. The court said that it was concerned about the misutilization of public money that should have been spent for the welfare of people. In cricket, the third and final ODI between India and Afghanistan will be played at the M.A. Chidambaram Stadium in Chennai this afternoon. The match is scheduled to begin at 1:30 p.m. The hosts have already secured the series with a 2-0 lead and will be aiming to complete a clean sweep for the 3-match series. And that is the end of this news bulletin.

जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। कभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिसे देश का बिजली बिल

0: दरअसल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दुनिया घटी है।
1: नॉर्थ ईस्ट
0: विश्वास के विकास।

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 23वां अनुदान वितरण समारोह में कमेंटरी नु प्रसारण दिल्ली केन्द्र थी कर खास कार्यक्रम युवाणी 6:30 गामना चोरो 7:20 तो अहत आज हवा पी प्रसारित थी रहा कार्यक्रमों की विगत स्थानिक हवामान छेल्ला 24 कलाक दरमियान कच्छ भूज खाते न्यूनतम उष्णतामान 29 डिग्री सेल्सियस तेमज महत्तम उष्णतामान 36 डिग्री सेल्सियस नोधायु कार्यक्रम की रूपरेखा तेमज स्थानिक हवामान आकाशवाणी भूज केन्द्र पर प्रसारित किया 8:00 हिन्दी में समाचार दिल्ली केन्द्र थी रिले करीशुं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
1: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता नारायणपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रूपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नारायणपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जायेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कोलकाता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्ध पोत INS दिनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचल क्रांति के दौरे पर है। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्व बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाले सरकार के परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा सब डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही है। जो दुनिया के सबसे एडवांस चिप्स हैं, जिनमें एनवीडिया और इंटेल के चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती है।
3: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 800 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
5: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, बिजनेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत हैं, जैसे क्लाइंट लॉन्च व्हीकल एक्सोसिएशन, डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
3: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉकड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नवाज।
6: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सहित। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों की सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली प्रमुखता, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
0: धन्यवाद फरहत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23

की पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल और सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश नागो। द हेडलाइंस।

का सोनीपुर प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में हुगली खाते थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना नो 23वां हप्तो खेडूतना खाता में डीबीटी माध्यम थी जमा करशे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हस्ते नवी दिल्ली थी देश में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना हेठळ 2400 करोड़ रूपया प्रोत्साहन रकम वितरण। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री देश में आईटी क्षेत्र में विकास ने वेग आप एसटीपीआई ने 2 और 3 स्थानों में विस्तृत कर। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा गुजरात में चित्ता ना वसवाट अंगे केन्द्र सरकार विचार कर रही है। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह कहूं भारत में स्थानिक संरक्षण उत्पादन छाणकीय वर्ष में 1,78,000 करोड़ रूपये थी वु थ। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल की उपस्थिति में 2 महीने योजना राज्य स्वागत ऑनलाइन जन फरियाद निवारण कार्यक्रम अंतर्गत जून 2026 राज्य स्वागत तारीख 22 जून योजना। अंदाजे 62,370 मेट्रिक टन एलएनजी भरेलू मालवाहक जहाज दिशा भरूच गहेज बंदर पहुंचे। गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा राज्यभर में गत 6 वर्ष में 1.5 लाख जेटला योग ट्रेनर्स तालीम शिक्षक तैयार कराया। सांसद विनोद भाई चावड़ा की उपस्थिति में आती काले

तारीख 21 जून सांझे 5 कलाके प्रदेश को दरिया किनारे योग दिन की उजाणी करवामां आवशे। कच्छना लोकवाद्य तथा लोक कलाकारों ने जतन तथा संवर्धन माटे कार्य करती कलावासो ट्रस्ट संस्था द्वारा कच्छना लोक कलाकारों ने अपातो कलावासो भूषण एवोर्ड वर्ष 2026 माटे जाहिर करायो। ग्राम स्वराज संघ मेहता द्वारा बालेश्वर गाने आरोग्य और पोषण संवाद कार्यक्रम नु आयोजन करवामां आव्युं। हवे पछीना समाचार 9:30 मिनिटे।

Raccoon, Sandy, Mujer Mirabel, and my boy Mickey. No pano, kerja. Dice que ni me He never went up. Sarir ke swasth rakhela karine. Paas aje jeer me. Bachche mare. Akutra ka dhamota. Pano, paje he never went up angre me. Paje ghar vach. योग जी हरी रात बजे जी पंगा सबर हुंदे पर पा थोड़ी आरस में तने कम में अने हिनारा मत योग से करो तेंगे इमेरे पाजी थोड़ी जागृति उच्ची हुंदे पा योग मत करो जिंजी करे पर बीमार पड़ते हो पा तो आवती काल है ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो योग दिन थी पाके क्या क्या फायदा जोड़े था क्या योग करने के पे मरी जी रात में जी जी घर पांच बच्चे आज योग जा जिए जाए अने ही मेरे अंगन तो सजे जोन जा कोऑर्डिनेटर विजय भाई सेठ आज पांच बच्चों योग जी रात में जी जी घर कर दा तो पां योग जी घर सो अन पर आपने अपने रात में जी जो भजन सुनी अने इन पर पां विजय भाई गानों योग जा करे करा फायदा है योग कुआं करो कपे इमली जगह संतासो तो हलो पहले पहले हाथ मजे जो भजन सुनो

आगे ग्रंथ लिखा इन्होंने योग जो लिखा तो जब 21 जून नजीक अची थी तो पांच योग जो जैसे थोड़ी माहिती होनी खपे तो ही शास्त्र

그러니까 뭐 인간이야 뭐 미션을 걸고 그리스 묶고 배불구나 아니 아 그리스 존 맞아 반가티 이 바지 끌 맞아 초리스 그리스 존조 마음 안타라스티의 욕 미워스 만나라 사주 미션 타이야네 파파 사주 पांचे गांव में पांचे जिले में पांचे राज्य में पांचे देश में न पूरे विश्व में 21 जून मनाएगा तो पापा मेरे बेटा के लिए 21 जून मनाएगा सी हमने और स्वास्थ्य जी डालता हूँ तो योग थी और स्वास्थ्य सारा रे अने मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य सारा रे अन्य कल में योग करना खूब जरूरी है अने सजे विश्व जी अंदर सजे विश्व में वासुदेव कुटुंबकम जी जी कल्पना पांचा वड़ा प्रधान कहे था ये पा योग थी शक्य है हम साथे साथे लोगों जे जी जीवन शैली बदलाई हुई है खाने पीने बदलाई हुई है आहार विहार बदलाई हुई है हमें जागरूकता अच्छे योग नियमित निरंतर अने सदा थी व्यक्ति जो जुड़ा जाए तो इनके अंदर जागृति अच्छी थी इनके साथ साथ जो बांधी भारत जी संस्कृति है धीमे धीमे सजी दुनिया का भूली गई है पर पाप पर पाजे संस्कृति बोलता हूँ ना कि पाजी संस्कृति है जी योग द्वारा पाप पाजी संस्कृति के याद करूँ पाजी अगली नई पीढ़ी अच्छी थी इनके पास पा योग साथी जानू योग जो अंदर मुख्य जो जो अभ्यास क्रम है ये अभ्यास क्रम जो हमारे के थोड़ी महत्व दिंदो से इनके पहला चीज यहाँ के दर वर्ष जब 21 जून योग दिवस मनाए नचे तो हमने हर वक्त जो थीम है ये स्वास्थ्य मन और अने विश्व शांति वा करीने योग हेना थीम साथे पा योग जो 21 जून मनाए था हमजे अंदर ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हर वर्ष थीम अलग अलग रहे तो कभी कहे तो योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी वजह 23 में वो योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम वजह 22 में वो योग फॉर इम्यूनिटी तो ही वाले योग फॉर स्वास्थ्य ज्ञान अने विश्व शांति माटे योग तो ये योग जो विश्व योग दिवस जो गुजरात राज्य योग बोर्ड गुजरात सरकार 100 दिवस जो अभियान चलाया अने 100 दिवस थी ये योग जो अभ्यास दरेक तालुका दरेक जिला अने गांव गांव योग जो अभ्यास थे था तो पाप योग जो अभ्यास कया हूँ दासी तो कल 21 जून अच्छी थी 21 जून जो जो अभ्यास टाइम है इन जो नाम है कॉमन योग प्रोटोकॉल तो कॉमन योग प्रोटोकॉल इतने कोई पर व्यक्ति नंदो वे युवा वे वृद्ध वे हर एक व्यक्ति योग जो अभ्यास कर सके ये अभ्यास क्रम पाके पंजे अंदर कल जो है ये बहुत सिंपल अने सरल है पाके जीवन जो अगर चेंज करना है पाके कोई बीमारी है पाके कोई तकलीफ है अने पा योग करूं हम तो पर स्वस्थ हूं अने पा रोज योग करूं तो पाके जीवन में खूब फेरफार किए तो हमने शुरुआत की थी प्रार्थना की पा ओम जो उच्चारण करिए अने प्रार्थना यूनिवर्सल प्रार्थना ये मानव जाति का करने की प्रार्थना ही प्रार्थना है प्रार्थना कोई सूक्ष्म ज्ञान जिनके चालन क्रिया चाहिए चाहिए हमने घरे खंभा कमर अने घुटन जा अभ्यास है सूक्ष्म व्यायाम है और उबोबा करने आसन जो अभ्यास है जो पंच उबोबा आसन है वो सरल आसन है इनमें तारासन वृक्षासन पादहस्तासन अर्धचक्रासन त्रिकोणासन ये मेरे आसन कोई भी व्यक्ति कर सके अमुक अमुक आसन कठिन आसन ये पा न कर सको कोई सामान्य व्यक्ति कर सके अरे ये कॉमन योग प्रोटोकॉल है अनपुठिया हुई ने करे जा सतत आसन है अनपुठिया पेट मथे सुमी ने करे जा आसन है ये लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर ये मेरे आसन पेट पुठिया पीठ जाकर अमुक आसन है ये मेरे आसन थी बने ये आसन थी बने पुठिया प्राणायाम जो अभ्यास है इनके अंदर कपाल भाती पहले कराई जी अच्छी थी कपाल भाती इनके अंदर 9 से 2 मिनट जो ये प्राणायाम जो सेशन है टोटल 45 मिनट के अंदर ये प्रार्थना की करी अने ठेठ ध्यान सुधी अने छले ध्यान 8 मिनट जो अने 48 मिनट ये अंदर ये सजो कॉमन योग प्रोटोकॉल पूरा थे तो बने तो आओ आते मनी कैपिटल टेंडर से कि छले शांति पाठ करी
અને એ ધ્યાન પોતે શાંતિ પ્રાપ્ત કરીને એટલે પોતે પ્રોટોકોલ પૂરો થઈ ગયો. આ મળી કે અપીલ કર્યો હતો ત્યાં સજે દેશ ની અંદર દરેક સરકારી ડિપાર્ટમેન્ટ જે અંદર પ્રાઇવેટ સંસ્થા જે અંદર સ્કૂલ જે અંદર કોલેજ જે અંદર અને એનજીઓ દ્વારા ઘણી જગ્યાએ એ કોમન લોકો

0: עולם סל, ושפסקי, וקסקי, ושנפוליאנקי. תראה, זה נורטיסט כבית בור יתתה. वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है कब से नॉर्थ ईस्ट से दुनिया घटी है सिकंदरपुर अत्यार दरिया जाए
1: अरे ना भाई ना मैंने खबर छे के मानसून ब्रेक दरमियान दरिये न जमाए मैंने माछी मारी न कराए समझो
0: के बराबर मानसून ब्रेक दरमियान दरियो खेलो एक गंभीर और सजा पात्र गुनो छे हाँ जो कोई अजानी अथवा शंकास्पद व्यक्ति के बोट दरिया में देखा है तो तात्कालिक 1093 पर कॉल करी मरीन पुलिस ने जान कर दी आपकी सजागता आने तक दारी आप दरियाई सुरक्षा की खातरी

જાણતો હો દોસ્તો,

अच्छी तरह काम रहे, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय योग डे विषय विजय सूचनी रजवा वार्तालाप अपने समूह कार्यक्रम

0: por último, Primes Verse. Tiran el 3 de Narendra Modi de la calle. Sara por eso se han dado con el de Barça que ha llegado a la iglesia. La reunión mucho en el 3 de Tupendra Patel. Calvet Suárez o el Pachis Jumel, sin otra noche no yo ya sé, Sara por eso se. También por tomar el mano con un mando duro, pero de la neta papá.
1: जानते हो दोस्तों, जैसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: सोलर पावर के मामले

0: Marasal, Vishnuske, Vikaske, Janakulyanke. पता है जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दुनिया घटी है।
1: Vishwas ke, Vikas ke.

0: Soltar és ara per a si no primers verses. Vibrar mentre és més lluny de molt dit bona cara. Sara, per això fa una boca, verdadera que a la vera grossa, l'ara millor no que mentre és lluny puc en repetir. I en aquests sols, en el petit jovent, se li treguen si no hi hagi així, sara per això fa. També per tu mare mare per una no dona, a la dona i tapa tu.
1: जानते हो दोस्तों, जैसे हम सिर्फ चिलचिलाते धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है।

जानते हो दोस्तों, जैसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है।

0: ולמסל, ושפרסקי, וקרסקי, ג'נפלנקי. תראה, זו נורטיסט כבי דור לטבע. यह हमारे गांव के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है तब से नॉर्थ ईस्ट से दुनिया घटी है साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के
1: जी मम्मी जी आप भी मैं थोड़ा नियम थे जिनके जिनके अलिया कैश की परंपरा न थी ये भी

0: बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: दरअसल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दुनिया घटी है। साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जी आप घर में थोड़ा नियम अच्छे जम के जम के आया कैसे परम्परा नहीं डिजिटल पेमेंट करिए जम के यूपीआई थी। अच्छा हाँ सामने हजू एक नियम से

0: So, can I get Joe Dragon Ball?
1: Bumper, if you have a wish, you will promise to yourself. The one who is in the room will be the one सारा परिषद ने मुख्य निर्धार साथ आगे बढ़े रहने से माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल प्रेरित 24 और 25 जून में समग्र राज्य में योजना से सारा परिषद तुम्हें तो तुम्हारे मानक में मानना देगा यह बढ़ाने पैदा

0: सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोता मित्र, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी में अहमदाबाद वडोदरा केंद्र नु प्रसारण। हवे प्रस्तुत छे फिल्म संगीत कार्यक्रम की शुरुआत करीशु। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी गायेला हब की सफाई फिल्म गीत थी।

0: छिन्ना बार वृष्टि हे विकास ने संकल्प कभी अव्यक्त नदी पुरुषार्थ ने गाथा वो प्यारी खोटी नदी यात्रा छिन्ना बार वृष्टि विकास ने समर्पित यशस्वी वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ने नेतृत्व में बार वर्ष विश्वास ने विकास ने जन कल्याण में सफर छह में नर्मदा की जल समृद्ध थकी धरान स्मार्ट सिटीज थी दुनिया में चमकती आधुनिकता बुलेट ट्रेन और वंदे भारत में गतिशीलता की लखाता एक नवा भविष्य में गगनयान का भारत में आत्मविश्वास थे चार वर्षीय यात्रा छे गुजरात में अंत्योदय और गरीब कल्याण सेवा और सुशासन पीएम आवास हर घर जल किसान सम्मान अने आयुष्मान कवच की मजबूत तथा जन जन आत्मविश्वास ने हमें तो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल ने प्रयासों की देश में ग्रोथ इंजन गुजरात बनी रहा है ग्रीन एनर्जी और भविष्य की आधुनिक टेक्नोलॉजी में पावर हाउस विकास ना महायज्ञ में वधु वेगवंत बनाइए विकसित भारत माते विकसित गुजरात बनाइए बार वर्ष विश्वास ना विकास ना जन कल्याण ना
1: अरे सिकंदर तू अत्यारे दरियो जाए छे
2: अरे ना भाई ना मने ये खबर छे के मानसून ब्रेक दरमियान दरिये न जवाए अने माछीमारी न कराए समझियो
1: ए बराबर मानसून ब्रेक दरमियान दरियो खेडवो ए गंभीर अने सजापात्र गुनो छे अने हाँ जो कोई अजाणी अथवा शंकास्पद व्यक्ति के बोट दरिया में देखाए तो तात्कालिक 1093 पर कॉल करी मरीन पुलिस ने जाण करवी आपनी सजागता अने तकेदारी आपे दरियाई सुरक्षा की खातरी गुजरात मरीन पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित
3: फिल्म छे आपकी कसम कलाकारों लता मंगेशकर ने किशोर कुमार

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिसे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। मारा वाला सागर खेलो भाइयों, दरिया खेलवा जाओ। एक अगला हवामान विभाग ने आ रही है, अगर दरिया की स्थिति में हमेशा ध्यान रखो। फिशरीज विभाग द्वारा हवामान खराब हवा में जो चेतावनी हो, तो दरिया जवानों पर बना जो दरिया में हो तो तुरंत पाछे आ जाओ। आज चेतावनी ने अगरवाना किस्सा में बोट डूबाना बनाने नोधायल है। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति के बोट माछीमारी करते देखा है तो तुरंत 1093 पर कॉल करी मरीन पुलिस ने जान करो। हवामानी समझी बनो सुरक्षित के बना। आप भी सजग रहने की तैयारी, आप भी दरिया की सुरक्षा की खातरी। गुजरात मरीन पुलिस द्वारा जन हित में।
2: હવે સમય શો કિશોર કુમારે ગયેલું જેલથી ફિલ્મ ગઈ.

ನಮ್ಮ ಬೇಚ.

another love day.

0: और सफर छह वहां नर्मदा की जड़ समृद्ध खती धाम स्मार्ट सिटीज थी दुनिया में चमकती आधुनिकता बुलेट ट्रेन और वंदे भारत में गतिशीलता की दिखाता एक नवा भविष्य ने गगनयान का भारत में आत्मविश्वास है। 4 वर्षीय यात्रा छे गुजरात में अंत्योदय और गरीब कल्याण सेवा और सुशासन पीएम आवास हर घर जल किसान सम्मान और आयुष्मान कवच की मजबूत तथा जन जन में आत्मविश्वास ने हमें तो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल ने प्रयासों की देश में ग्रोथ इंजन गुजरात बनी रही है ग्रीन एनर्जी और भविष्य की आधुनिक टेक्नोलॉजी में पावर हाउस और विकास में महायज्ञ ने वधु वेग बनकर बना दिए विकसित भारत माके विकसित गुजरात बना दिए बार वर्ष विश्वास में विकास में जन कल्याण।
1: अरे भाई तेरा सामने

ने बलिया माल के किनारे अजारी रोड व्यक्ति के शंकास्पद हिलचाल दिखाए तो तरह तरह 1093 पर कॉल करी। मरीन पुलिस ने जानकारी दी। अपनी सजागता में तथेदारी आप दरियाई सुरक्षा नहीं।

0: की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मनाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। इसलिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखिए, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हिंदी गीत गजल कार्यक्रम में हवा संदेश अलीशा चिन्नोई ने, गीतकार श्याम अनुरागी।

0: कारण के स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन नो मार्ग योग द्वारा ज रहेलो छे। अंत में प्रधानमंत्री ना शब्द अनुसार दररोज योग बदावे रोग, आ शब्दों साथे कृपा करी मने तमारी रजा आपसो, आभार।
1: आंतरराष्ट्रीय योग दिवस निमित्ते योग फॉर हेल्दी एजिंग आ विषय पर योग गुरु हरीश शुक्ल नो विशेष वार्तालाप हम आप सांभळी रह्या था। आशा रखिए कि आ वार्तालाप थी आपने योग नो महत्व अने नियमित अभ्यास नी जरूरियात समझवा में मदद मळी हशे। हवे सांभळीए आ योग विशेष गीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। अपने पैतृक गांव में राष्ट्रपति ने 68वां जन्मदिन भी मनाया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहाड़पुर गांव पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा किया। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारियां पुख्ता हैं। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। श्री मुखोपाध्याय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों में सेवाएं प्रदान की और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में भी कार्य किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। विश्वभर में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। यह विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देशभर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा।

स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। 1:11 हुए हैं और ये वक्त रहता है कलाकार बेमिसाल का। कलाकार बेमिसाल में आज हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री बीना रॉय, असली नाम जिनका रहा कृष्णा सरीन। 50 के दशक के बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक बीना रॉय, जिन्होंने 1951 में प्रदर्शित फिल्म काली घटा से अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। ऐसी सशक्त अभिनेत्री जिन्होंने अपने शुरुआती फिल्मों में ही अपनी कला का जौहर दिखाना शुरू कर दिया। उनका अभिनय, प्रेजेंटेशन, हाव भाव और फेस एक्सप्रेशंस काफी प्रभावित करते थे। उनका सदा हुआ अभिनय लोगों के दिलों में घर कर गया और बस वो जल्दी ही फिल्म जगत की एस्टैब्लिश्ड हीरोइन बन गई। बीना रॉय, इन्हीं का जिक्र होता रहेगा कलाकार बेमिसाल के सफर पर चलते हुए, आज इस सफर को तय करते हुए। सुनते रहे आकाशवाणी गोल्ड 100.1, अंजलि है आपके साथ।

प्रस्तुत है भारतीय दस्तकला कार्यक्रम जय भारती। जय भारती कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। दोस्तों, आज के जय भारती कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे राग चारू केशी पर आधारित कुछ हिंदी फिल्मों के गाने। दोस्तों, राग चारू केशी अपनी भावपूर्ण प्रकृति के कारण विशेष रूप से करुणा, भक्ति और प्रेम रस के लिए जाना जाता है और दोपहर में राग चारू केशी विशेष रूप से प्रभावी रहता है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में रास फिल्म के इस गाने से, जिसे लिखा है शमीम जयपुरी ने और संगीत से संवरा है कल्याण जी आनंद जी ने।

आइए सुनते हैं अख्तर रबीन का लिखा कल्याण जी आनंद जी का संगीत किया हसीना मान जाएगी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर में।

कैप्टन का नाम है परमर पश्चिम, इस गीत को गाया है मुकेश ने, लिखा है इंदेवर ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

आप सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में मेरे हम सफर फिल्म का गीत। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र, आवाज लता मंगेशकर की, बोल इंदी वर्की, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

इस दशहरे के अहमदाबाद वडोदरा राजकोट और भूज केंद्र से आप सुन रहे हैं जय भारती कार्यक्रम। आज के जय भारती कार्यक्रम में राग चारुकेशि पर आधारित कुछ हिंदी फिल्मों के गाने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म आरजू से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, लिखा है हंसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का।

गायब सुन तो है इंदिवर का लिखा, कल्याण जी अनिल जी का सिंगर बट किया, हिमालय की गोद में फिल्म गीत, लता मंगेशकर की आवाज में।

आमने सामने। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मामा ग्रफी ने। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पूर्व परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंबमपति, मुख्यमंत्री मोहन शरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: ओडिशा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों के बातचीत के जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गाँव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के दंडादेश में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उड़ीसा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रवती परिदा जी, ओडिशा के मंत्री गणेश सिंह खुंटिया जी, कृष्ण चंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण मांझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है।

राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य,

रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।

0: के बाद गृह मंत्री इचल करंजी ने जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में एंटन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें और इस बार के योगा के ऊपर डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की माई लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं और ये प्रूव हो चुका है।

0: हर दिन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्व श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय है। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
1: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन दो योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और अभी पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाईब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
2: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान उन लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आए होगी वो दूर हो जाएगी।
0: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपंकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मनाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कार्यक्रम अंत में समय शो अनंत वैसे कैली ध्रुव भट्ट ने शब्द रचना।

तीसरी किस्त जारी करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहाँ की यह है कि इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसान लाभ

पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जा रही है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और ये भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी और उससे ज्यादा हो गई। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण

विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधारी सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है।

0: की संस्कृति और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
1: Absolutely, Siddharth. This is the promise with which the government has been formed in Bengal. After years and years of injustice, now we see that the government, and this will be a government which will be a government of double engine, and today's function, Siddharth, is not just something that we are seeing for the first time. This is the 23rd installment. This is a direct transfer. We don't just see one promise, we see many promises together. We see an actual execution of the Digital Bharat. We see no middlemen. We see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is pace. An amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now, and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country. Along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi, the following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity and limited credit flow. Imagine. We are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers. It's not just the money that is going to the farmers. It is also fertilizers. It is also the good quality of seeds. It is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
0: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है, ये न सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है। और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्रीस्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा। 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा, जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्रीस्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रीय सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी, तो चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट।
1: एब्सोल्युटली, एज़ यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी। And I want to say that it won't just be the procurement of things that will happen in a very smooth and a very functional way, but the whole line of credit. Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile by more fertilizers, again, through natural and organic ways. Then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit to the farmers. And then when you get those rates, and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The Kisan or the farmer brothers and sisters are getting support from the government. That is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of Antyodaya. When you include each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Vikasit Bharat.
0: बिल्कुल विकसित भारत की बात आपने की है और एक सरकार की एक जो नई पहल है देश में जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है जो मिडिल मैन की भूमिका है उसको खत्म किया जा रहा है ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके। आप ऐसा सोचिए कि वैभव किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है जो या वो प्रोडक्ट होता है उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है कि देश में ज्यादातर जो कोऑपरेटिव्स को हम डेवलप करें इस फॉर्म को डेवलप करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़े ताकि एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले। जैसे आप आज आपने टेक्नोलॉजी के बाद बात करी है कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए और जितनी भी सारी उसमें इस पूरे प्रोसेस में इस पूरी प्रक्रिया में जहां जहां किसानों को चाहे हम किसान की सॉइल की बात करनी हो चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो

सकती हूँ। और डिजिटल जैसा कि आज पीएम किसान के तहत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के खातों में जो पैसे पहुंचने वाले हैं 18,880 करोड़ रुपए, तो ये भी डिजिटल होता जा रहा है। और इस बीच हम इससे पहले आगे बढ़े, आइए सुनते हैं।

0: समय हम देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है और वो मंच पर पहुंच गए हैं और चारों तरफ से ये इन लोगों की आवाज है, उनको अभिवादन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और
1: समर्पण
2: Honourable Prime Minister, on the stage is sitting along with the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, and the Chief Minister of West Bengal, Sri Surendra Adhikari, people framing their necks. Now, the national anthem and the national song.

होंगे राष्ट्रवादी डबल इंजिनियर सरकार सरकारी भावे पश्चिमबंग दिवस तारकेश्वरे पालन करछे आमरा गर्वित आमादेर ए राष्ट्रेर महान व्यक्तित्व जिनि राष्ट्रके समर्पण करेछेन राष्ट्र निर्माणे जार भूमिका सबचेये बेशि সেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আজকে

0: विभिन्न मंत्रालय के कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: रिलीज ऑफ द पीएम किसान निधि, द 23rd इंस्टॉलमेंट बीइंग डन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विद अ स्माइल ऑन हिज फेस एंड अ कॉन्फिडेंट हैंडशेक। नाउ दिस हैज बीन रिलीज्ड, वेरियस बेनिफिशियल स्कीम फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, वेरियस स्कीम्स इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रेलवेज, ऑफ रोडवेज, ऑफ पोर्ट डेवलपमेंट्स, ऑफ फिशरीज, ऑफ हाईवेज, सो मेनी थिंग्स टुगेदर बीइंग रिलीज्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर।
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया है, जो किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस आंदोलन कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: The goat production, the laboratories that are there, it relates to the ports that are being developed, it relates to the final producers that will be given a fair share in the market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people in the next happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise.

0: लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रही है और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के जो तीसरी किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर किया और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई और 9,44,00,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
1: And Siddharth, more than 2 crore many beneficiaries are amongst those farmers who are getting this direct transfer, this installment of PM Kisan Samman Nidhi. Imagine the level at which this scheme is now operationalized, it's functional, it's being executed. Imagine what is happening, and now the moment that everyone has been waiting for. Everyone is now waiting for the fact that yes, the Honourable Prime Minister will speak his heart out. And there he is, on stage, Prime Minister Modi.
2: अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बिहार के मेरे भाई और बहनों, बाबा साहेब नाथ और बिहार की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति

आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में एक नई ताजगी है। यहाँ के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का प्रारंभ हो गया है। आज का एक कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। गौतम भले आगे छो इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जब स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता के स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। ये ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार ने इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। पश्चिम बंगाल में दशकों तक पहले मैप और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें ढोने के लिए जगन मोहन सरकार

Yeah.

0: अपने मुख को भूलने का चुपचाप होकर बैठे, लेकिन बंगाल ने अपने अस्मिता और पहचान को मुक्त नहीं होने दिया। किसी का प्रमाण था वो पूरे बंगाल के भाई को अलग करने की साजिश हो रही थी।
1: Thank you.

Yeah.

I'm not going to be able to do that.

Thank you.

Ma che c'è?

और मेरे किसान

Yeah.

साथ ही कमेंटेटर वैभव जोशी श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।

सभी मित्रों, हम आप सुन रहे थे माननीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आज किसान सम्मान निधि 23मो हप्तो हस्तांतरित करवामां आव्यो ते कार्यक्रमनुं जीवंत प्रसारण अमारा दिल्ली केन्द्र परथी करवामां आव्युं। आप सुनी रह्या छो आकाशवाणीनो अमदावाद वडोदरा केन्द्र। प्रस्तुत छे गुलमोहर हिंदी फिल्म संगीतनो कार्यक्रम। जगजीत सिंह संग्रह, फिल्मनुं नाम तुम बिन।

बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। इसलिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं, नमो ऐप या माई गाँव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्ते, ही आकाशवाणी आहे. हाणे ते मनपा खूप छंदानी खां देश ऐं विदेश जा समाचार ॿुधंदा. सभ खां पहिरियों मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सां गॾु ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपयनि खां वधीक जी विकास योजनाउनि जे लाइ पीर जो पथर रखियो. मर्कज़ी सरकार सोरन फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन याने FDC दवाउनि जे निर्माण विक्री ऐं विच ते तुर्त असर हेठि पाबंदी मिली आहे. राष्ट्रीय तैलीम एजेंसी सुभाणे थींदड़ NEET UG 2026 वर इम्तिहान खां अवल समूरे मुल्क में मॉक ड्रिल. आबहवा महक में ओलह बंगाल जे हेठाई वारनि इलाइक़नि ऐं सिक्किम में सुभाणे ताईं कुझु जायुनि ते तेज बरसाति लाइ रेड अलर्ट ज़ाहिर कयो आहे. ऐं फुटबॉल विश्व कप में अॼु ग्रुप एफ जे मुक़ाबले में नीदरलैंड जो सामनो स्वीडन सां. हाणे समाचार तफ़सीलवार ॿुधंदा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ अॼु चयो त मर्कज़ी सरकार जे कल्याणकारी ऐं बिरादरी कार्यक्रमनि खां सशक्त थी आदिवासी बिरादरी भारत जे विकास में सरगर्म माइवर जे रूप में उभरी रही आहे. ओडिशा जे मयूरभंज जिले जे रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार जा 10 साल मुकमल थियण जे मद्देनज़र मुंतज़िम हिकु विशाल अवामी सभा खे ख़िताब कंदे हुन साहिब चयो त आदिवासी आबादी ॾहाकनि खां महरूमीअ जो शिकार आहे. हाणे उन बदिरां तइलीम, सिहत शेवा, आजीविका ऐं सामाजिक तरक़ीअ जा नवां वज मिली रहिया आहिनि. प्रधानमंत्रीअ 2 सालनि जे कार्यकाल में ओडिशा सरकार जे हासिलातुनि जी साराह कई. इन मौके ते हुन जनाब 47,000 करोड़ रुपयनि खां वधीक जे विकास योजनाउनि जे लाइ संगे बुनियाद रखियो ऐं ओभरी भारत जे विकास में तेज़ी आणण जे मक़सद सां मर्कज़ी सरकार जे नज़रिये खे दोहरायो. हिकु रिपोर्ट.
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है. केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास. इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं. जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है.
0: पंहिंजी तकरीर दौरान श्री मोदीअ बैठक में हाज़िर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खे जनम ॾींहं जूं नेक तमनाऊं ॾिनियूं ऐं अॼु सुबुह मयूरभंज जिले जे उन महतरमा जे ॻोठ जो दौरो कयो. ओडिशा जो गवर्नर ऐं मुख्यमंत्री बि अवामी सभा में हाज़िर हुआ. साॻी अवामी सभा खे ख़िताब कंदे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अॼु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ जे सरबराहीअ जी साराह कई. हुन मोहतरमा चयो त श्री मोदीअ विश्व नेताउनि सां गॾु पंहिंजे दूरांदेशी शासन रचनात्मक राब्ते ज़रिए आलमी मंच ते भारत जी इज़त ऐं असर खे वधायो आहे. मर्कज़ी सरकार सोरन फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी FDC दवाउनि जे निर्माण विक्री ऐं विर्छ ते तुर्त असर हेठि पाबंदी मिली आहे. इहो फ़ैसिलो सुप्रीम कोर्ट जी हिदायतुनि ते कयल माहिरी कमेटीअ जे जाइज़े खां पोइ वरितो वियो आहे. कमेटीअ इहा मालूमात हासिल कई त दवाउनि जे मेलाप जो मुनासिब वाजिबी सबब कोन आहे. इन जो इस्तेमाल सिहत लाइ ख़तरो पैदा करे सघे थो. सिहत ऐं परिवार कल्याण मंत्रालय चयो त इन कदम जो मक़सद महफ़ूज असरात ऐं वैज्ञानिक तौर ते तस्दीक थियल दवाउनि जी मुयसरता खे यकीनी बणाइणु आहे. राष्ट्रीय तइलीम एजेंसी सुभाणे थींदड़ NEET UG 2026 वर इम्तिहान जी तयारियुनि जे तहत अॼु समूरे मुल्क में मॉक ड्रिल करे रही आहे. सुबुह 9 बजे खां शुरू थियल इहो अभ्यास सॼे ॾींहं लाइ जारी रहंदो. इन अभ्यास में 2.5 लख खां वधीक हिफ़ाज़ती कर्मी शामिल आहिनि. इन जो मक़सद इम्तिहान जे महफ़ूज, बेरियाव ऐं बहितरीन संचालन खे यकीनी बणाइणु आहे. एजेंसी मुताबिक़ NEET UG 2026 वर इम्तिहान भारत जे 551 शहरनि ऐं विदेश जे 14 शहरनि में मुंतज़िम कयो वेंदो, जंहिं में 22 लख 79,000 खां वधीक उमेदवार शामिल थींदा। ही समाचार वरी आकाशवाणीअ खां ॿुधी रहिया आहियो। वधीक समाचारनि जी तफ़सील जे लाइ तव्हां असांजी वेबसाइट newsonair.gov.in खे फॉलो करे सघो था। इहे समाचार तव्हां असांजी यूट्यूब चैनल एयर न्यूज गुजरात ते बि ॿुधी सघो था। आबहवा महकमे ओलह बंगाल जे हेठाई वारनि इलाइक़नि ऐं सिक्किम में सुभाणे ताईं कुझु हिसनि में तेज़ बरसाति लाइ रेड अलर्ट ज़ाहिर कयो आहे। महकमे केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल ऐं देश जे उत्तरी ओभरी हिसनि में पिण बरसाति जा इम्कान ज़ाहिर कया आहिनि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में सुभाणे स्वदेश में तयार थियल बहिरी फ़ौज जे टिन जहाजनि INS दुनागरी, INS संशोधक ऐं INS अग्रे जी रहनुमाई कंदो। इन्हनि जहाजनि जो निर्माण भारत में कयो वियो आहे। इन्हनि जो इस्तेमालु सामूंडी हिफ़ाज़त मुआइने ऐं आबदोस रोधी अभियान में कयो वेंदो। गृह मंत्री अमित शाह अॼु कोल्हापुर ऐं इचलकरंजीअ जे दौरे ते आहे। हुन साहिब महालक्ष्मी मंदर जे अंगण में मुख़्तलिफ़ विकास जे कमनि जो महूरत कयो ऐं कोल्हापुर जे पुलिस परेड ग्राउंड में हिकु अवामी सभा खे ख़िताबु कयो। गृह मंत्री अमित शाह चयो त

0: डोर बनना है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिन सुभाने मुल्क भर में मल्हायो वेंदो। मारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिन जो मौजू आहे सेहतमंद उम्र जे लाइ योग। इहो मौजू हर उम्र में योग जी अहमियत के चिट्टो करे थो। असांजे खातो जाण ॾिनी आहे त अंतर्राष्ट्रीय योग दिन जे मौके ते सकाफती वजरात समूरे मुल्क में 100 खां वधीक जायुनि ते खास कार्यक्रम मुंतजिम करे रहियो आहे। इन में भारत जे शाहूकार वरसे ऐं योग जी रिवायतुनि जो हुमाउ कयो वेंदो।

0: प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
1: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें और इस बार के योगा के ऊपर डिक्लेरेशन जो होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपना प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है उनको हम बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं और ये प्रूव हो चुका है।
2: भारतीय सूचना सेवा के अग्रणी अमलदार दीपांकर मुखोपाध्याय जो कल रात लंबी बीमारी बैद कोलकाता में चालान थो साहिब 77 वर्ष जो हो रांदन पास रुप कंदे फुटबॉल विश्व कप में अज ग्रुप एफ जो मुकाबलो नीदरलैंड जो मुकाबलो स्वीडन से रात 10:30 बजे थो। हाँ मुख्य समाचार इतो बेहर बुधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गुड़ीसा में 47,000 करोड़ रुपये का जी विकास योजना लाइ पेड़ जो पत्थर रखो मरकजी सरकार सोरन फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी एफडीसी दवाओं के निर्माण विक्रे अगर्च तुर्त असर पाबंदी मिली है। राष्ट्रीय तैलीम एजेंसी सुबह नीट यूजी 2026 पर इम्तिहान का अव्वल समूरे मुल्क में मोकड्रिल आबहवा महकमे ओलह बंगाल के हेठी वाले इलाकों ने सिक्किम में सुबह तीन कुछ जगह तेज बरसात लॉज अलर्ट जाहिर किया। फुटबॉल विश्व कप में अज ग्रुप एफ के मुकाबले में नीदरलैंड के मुकाबले स्वीडन से सिंधी समाचार जो ये अंक समाप्त अजाजत नमस्ते।

आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर, हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे

0: आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ाऊं।
2: तो रोका किसने? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: वो तुमसे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: तो आप ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं।
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700142042।
1: अभी फोन लगाता हूँ 8700042042।

0: થોડી જ વારમાં હિન્દીના સમાચાર અમારા દિલ્હી કેન્દ્રથી રિલે કરીશું.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં કરિશ્મા રાય. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की. उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है. राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में यह बात कही. प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे. श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं. श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार के पूर्वोत्तर दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया.
2: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य नजर आ रहा है. केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास. इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं. जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है.
1: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया. बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.
2: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है. रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी. इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ.
1: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए. इससे देशभर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा. प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का अनावरण करेंगे. इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है. इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों ने योगदान दिया है. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा. 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा. प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में सामान्य योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे. ये राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे से शुरू होगा. सरकार ने जनहित में 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया. समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं. भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा. बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे. बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी. कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथूला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया. जत्थे में 2 संपर्क अधिकारियों और 1 चिकित्सा अधिकारी सहित 41 तीर्थयात्री और 4 सहायक कर्मचारी शामिल हैं, जिससे इस दल की कुल संख्या 47 हो गई है. चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है. ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 16वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 123 रन बना लिए हैं. इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
3: आकाशवाणी भूज प्रस्तुत छे मुख्य समाचार। 12मा आंतरराष्ट्रीय योग दिवस नी आवतीकाले वैश्विक स्तरे उजवणी थशे। राष्ट्रीय उजवणी कोलकाताना ऐतिहासिक रेड रोड खाते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीना नेतृत्वमां योजाशे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूने आज जन्मदिवस निमित्ते उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री सहित नेताओं शुभेच्छाओं पाठवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आवतीकाले मध्य प्रदेश जबलपुर आंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य मेहमान हशे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आवतीकाले कोलकाता में स्वदेशी रीते निर्मित त्रण भारतीय नौकादल त्रण जहाज आईएनएस दुनागिरी आईएनएस संशोधक आईएनएस अग्रणी लॉन्चिंग करशे। अमेरिकाना राष्ट्रपतिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सशक्त और प्रभावशाली नेता गणाव्या। आवतीकाले नीट यूजी 2026 की परीक्षा भारत में 551 शहरों में विदेश 14 शहरों में 22,79,000 थी वधु उम्मीदवारों माटे लेवामां आवशे। अमेरिकाना खास दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानना विदेश मंत्री अब्बास अराघची हवे आगामी वाटाघाटो स्विट्जरलैंड में करशे। यात्राधाम पावागढ़ खाते श्रद्धालुओं की भीड़ और ट्राफिक की समस्या ने ध्यान में रखी आगामी 2 मार्च सुधी तमाम रविवार वाहनों पर प्रतिबंध लादवामां आव्यो। कच्छ में योजनारा त्रिदिवसीय प्रवेशोत्सव में बालवाटिका धोरण 1 और 9 में 1,00,000 थी वधु बाळकों ने प्रवेश अपाशे। राज्यमंत्री सांसद धारासभ्यो सहित महानुभावो बाळकों ने शाला प्रवेश करावशे। अदानी मेडिकल कॉलेज नवा डीन तरीके डॉक्टर अजीत कुमार खिलनानी ने नियुक्त करवामां आव्या। कच्छना लोकवाद

0: हमारा एक भगवान के सामने हमें 10 भगवान तुम्हारे सामने चलना चाहिए। आप सब लोगों ने अपने साथ में साथ है, मेरी खूब खूब शुभकामनाएं।
1: देशभर में आवतीकाल नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी की पूर्ण परीक्षा योजना राज्य में 79,000 की वधु विद्यार्थी परीक्षा आपसे परीक्षा में कोई गैरीति न था तो माटे सरकार सतर्क बनी है। परीक्षा केन्द्रों आसपास चुस्त पोलिस बंदोबस्त गोठवी देवाया परीक्षा ने सुचारू आयोजन राज्य नोडल अधिकारी और कायदो व्यवस्था आईजीपी मुकरंद चौहान आज माहिती आपी हती कि विद्यार्थियों समयसर परीक्षा केन्द्र पर पहुंचे तेनी काळजी लेवाई छे। बीजी तरफ सोशल मीडिया पर पण चाँपती नजर राखवामां आवी रही छे।
2: परीक्षा सुचारू रूपे पूरी थाय ते माटे जे पण अमे एजेंसी छे केन्द्र सरकार

0: अहमदाबाद में एशियन वॉलीबॉल कॉन्फेडरेशन यानी कि एवीसी मेन्स कप 2024 आज से प्रारंभ थो। नारायणपुरा में वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खाते 28 जून सुधी योजना आ स्पर्धा में एशियानी श्रेष्ठ वॉलीबॉल टीमों वच्चे रोमांचक मुकाबला जोवा मळी रह्या छे। स्पर्धा प्रथम दिवसे कुल चार मैचों में दिवस की छेली मैच भारत और न्यूजीलैंड वच्चे रात में 9 वाग्या शुरू थशे। स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ गुजरात ने एशियन वॉलीबॉल कॉन्फेडरेशन संयुक्त उपक्रम योजना आ स्पर्धा में भारत सहित कुल 12 देशों की टीमों भाग ली रही है। 9 दिवस सुधी चलने वाले टूर्नामेंट में कुल 38 मैच रमाशे। अंत में मुख्य समाचार फरी एक बार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पीएम किसान नो 23 नो हप्तो जाहिर कर्यो। राज्य में 1 लाख खेडूतों ने सहाय चुकवाई। देशभर में आती काले नेट यूजीनी परीक्षा चुस्त पोलिस व्यवस्था गोठवाई। सूरत में निंगली में एक व्यापारी साथ 94 लाख रूपया की साइबर छेतरपिंडी। राज्य सहित विश्वभर में आती काले आंतरराष्ट्रीय योग दिवस उजवाशे। सौराष्ट्र कच्छ उत्तर और दक्षिण गुजरात में आज वरसाद की आगाही। एशियन वॉलीबॉल कॉन्फेडरेशन मेन्स कप 2024 आज से अहमदाबाद में प्रारंभ। आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा केन्द्र पर प्रादेशिक समाचार पूरा था। हे पछा रात्रि 7:50 राष्ट्रीय समाचार सांभळी शकशो। नमस्कार।
1: ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छे मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: पहले

0: आकाशवाणी समाचार जयेश पटेल वाचू छु। सर्वप्रथम मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ए कहू कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेतृत्व में भारत सतत शांति संवाद और सहयोग एक अवा तरीके उभरी आयु। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9 करोड़ खेडूतों ने पीएम किसान योजना 23 हफ्तों वितरित करो। केन्द्र सरकार तात्कालिक असर से मानव उपयोग 16 निश्चित मात्रा की मिश्रण दवाओं उत्पादन वेचाण और वितरण पर प्रतिबंध मुको। नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा आती योजा। विश्वभर में आती 12मा आंतरराष्ट्रीय योग दिवस की उजवणी आईएसएसएफ जुनियर वर्ल्ड चैम्पियनशीप 2026 में भारत आज 5 चंद्रक जीत्या। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेतृत्व की प्रशंसा करता कहूं कि दूरंदेशी शासन और विश्व नेताओं साथ रचनात्मक जोड़ द्वारा वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ाया है। राष्ट्रपति मोहन चरण मांझी सरकार ने 2 वर्ष पूर्ण थाना प्रसंगे ओरिस्सा मयूरभंज जिला में रायरंगपुर में एक जाहिर सभा ने संबोधित कर प्रसंगे प्रधानमंत्री हाजिर था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेतृत्व में भारत सतत शांति संवाद और सहयोग एक अवार्ड तरीके उभरी आयु। श्री मोदी ने राष्ट्रीय सेवा प्रति अटूट समर्पण की प्रशंसा करता विश्वास व्यक्त करो कि नेतृत्व भारत में वु समृद्धि और आंतरराष्ट्रीय स्तरे श्रेष्ठता तरफ दौरी जैसे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज ओडिशा मयूरभंज जिला में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पैतृक ग्राम पहाड़पुर की मुलाकात ली। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार ने 2 वर्ष की वर्षगांठ निमित्त रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में हाजिर रहा था जहां ऊर्जा परिवहन औद्योगिक माथागत सुविधाओं आरोग्य शिक्षण सिंचाई और पीवाना पानी संबंधित 47,600 करोड़ रूपया विकास प्रोजेक्ट उद्घाटन और शिलान्यास कर।
1: हमारी सरकार ओडिशा के संसाधनों को ओडिशा की संभावनाओं में बदल रही है। ओडिशा में बड़ा निवेश आए, यहाँ नए उद्योग लगे, इसके लिए उत्कर्ष ओडिशा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत अब तक करीब 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज हुगली जिला में तारकेश्वर खाते पश्चिम बंगाल दिवस उजवणी में भाग लीधो। 18,880 करोड़ रूपया ने पीएम किसान योजना 23 हफ्तों में वितरित कर देशभर में 9.44 करोड़ खेडों ने फायदो।
1: आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देशभर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल का नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा।
0: श्री मोदी ने मुख्यमंत्री सुरेंद्र अधिकारी साथ राज्य दिवसीय उजाणी में योजना भव्य कार्यक्रम में भाग लीधो। तेमणे रेलवे कृषि ग्राम्य विकास मत्स्य उद्योग और पशुपालन क्षेत्र में विविध विकास प्रोजेक्ट लोकार्पण और शिलान्यास करे। आंध्रप्रदेश मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबु नायडू 2026 की खरीफ सीजन प्रधानमंत्री किसान अन्नदाता सुखीभाव योजना हेठ नाणकीय सहाय ने प्रथम हप्ता तरीके 3,125 करोड़ रूपया जारी कर। आ सहाय प्रति खेडूत 7,000 रूपया आधारे आंध्रप्रदेश 46.85 मिलियन खेडूत खाता में ट्रांसफर कर। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर इचलकरंजी की मुलाकात लेंगे। तेमणे महालक्ष्मी मंदिर सेंटर में विविध प्रोजेक्ट उद्घाटन करी और कोल्हापुर में पोलिस परेड ग्राउंड खाते जाहिर सभा ने संबोधित करी।

0: दूसरा महल भी आज हमारी श्रृंखला सुबह कहानी। सुबह कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्वामिनी का तीसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे। वाचक स्वर ममता सिंह। इस कहानी में अब तक आपने सुना
1: राम प्यारी और राम दुलारी दो सगी बहनें थी। दोनों का विवाह मथुरा और बिरजू दो सगे भाइयों से हुआ। दोनों बहनें नैहर की तरह ससुराल में भी प्रेम और आनंद से रहने लगी। शिवदास को पेंशन मिली, दिन भर द्वार पर बैठे गपशप करते, मेरा पूरा परिवार देख देख प्रसन्न होते, लेकिन देवगति से बहन बहू को देखकर एक क्षण के लिए उसकी आंखें सजल हो गयी। कदाचित उसने सोचा था घर स्वामिनी बनकर विधवा के आंसू पुछ जाएंगे, कम से कम उसे इतना कठिन परिश्रम न करना पड़ेगा, इसलिए उसने भंडारे की कुंजी बहू के सामने फेंकी थी। वैधव्य की व्यथा को स्वामित्व के गर्व से दबा देना चाहता था। कई महीने बीत गए, प्यारी के अधिकार में आते ही उस घर में जैसे बसंत आ गया। भीतर बाहर जहाँ देखिए किसी निपुण प्रबंधक के हस्त कौशल सुविचार और सुरुचि के चिन्ह देखते थे। वो गृहस्थी की संचालिका है, सभी अपने अपने दुख उसी के सामने रोते हैं, पर जो कुछ वो कहती है वही होता है। गांव में प्यारी की सराहना होती थी। दुलारी को लड़का हुआ तो प्यारी ने धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया। कुछ दिनों के बाद शिवदास भी इस दुनिया से चले गए। उधर दुलारी के दो बच्चे और हुए, वो भी अधिकतर बच्चों के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। खेती का काम मजूरों पर आ पड़ा। मथुरा मजदूर तो अच्छा था, संचालक अच्छा न था, इसीलिए प्यारी को अब दिन में दो चार चक्कर हार करने लगाना।

0: पहली वो तो एक मालकिन थी और वास्तव में घर भर की सेविका थी। 30 वर्ष की अवधि मथुरा ने कहा, भाभी अब तो कहीं प्रदेश जाने का जी होता है, यहाँ कमाई में कोई बरकत नहीं। कोई आदमी पूरब से आए हैं, वे कहते हैं वहाँ 2-3 रुपए रोज की मजदूरी मिलती है। 4-5 साल भी रह गया तो मान लो माल हो जाऊंगा। प्यारी ये प्रस्ताव सुनकर अवाक रह गई, आंखों में आंसू लाकर कहा, जो ऐसा ही है तो तुम चले जाओ, बाल बच्चों को कहाँ कहाँ बांधे फिरोगे। दुलारी बोली, ये कैसे हो सकता है बहन, यहाँ देहात में लड़के क्या पढ़ेंगे लिखेंगे, बच्चों के बिना इनका जी भरने लगेगा। प्यारी बोली, तो मैं यहाँ रह कर क्या करूँगी, मुझे भी लेते चलो।
1: अब आगे सुनिए।
0: दुलारी उसे साथ ले चलने को तैयार न थी, कुछ दिन जीवन का आनंद उठाना चाहती थी। बोली, बहन तुम चलती तो क्या बात थी, लेकिन फिर यहाँ का सारा कारोबार तो चौपट हो जाएगा। तुम तो कुछ न कुछ देखभाल करती ही रहती हो न। प्रस्थान की तिथि के एक दिन पहले ही राम प्यारे ने रात भर जाकर हलवा और पूरियां पकाई। जब से इस घर में आई कभी एक दिन के लिए भी अकेले रहने का अवसर नहीं आया, दोनों बहनें सदैव साथ रही। आज उस भयंकर अवसर को सामने आते देखकर प्यारी का दिल बैठा जाता था। वो देखती थी मथुरा प्रसन्न है, बाल वृंद यात्रा के आरंभ में खाना पीना तक भूल गए हैं, तो उसके जी में आता वो भी इसी भांति निर्द्वंद्व है, मुँह और ममता को पैरों से कुचल डाले, किंतु ये ममता जिस खाने को खाकर पली थी उसे अपने सामने से हटाए जाते देख शुद्ध होने से न रुकती थी। प्यारी के सिर सारे प्रबंध का भार था। विदाई का दिन प्यारी के लिए प्रतीक्षा का दिन था, उसके जी में आता था कहीं चली जाए जिससे वो दृश्य देखना न पड़े। जो जो समय निकल आता था उसकी वृत्तियाँ शिथिल होती जाती थी, वो कोई काम करते करते जैसे खो जाती थी और अपलक नेत्रों से किसी बिंदु की ओर ताकने लगती थी। बच्चे नए नए कुर्ते पहन नवाब बने घूम रहे थे, प्यारी उन्हें प्यार करने के लिए गोद में लेना चाहती तो रोने का समूह बनाकर छुड़ा कर भाग जाते। 10 बजते द्वार पर बैलगाड़ी आ गई, लड़के पहले से ही उस पर जा बैठे। गांव के कितने स्त्री पुरुष मिलने आए, प्यारी को उस समय उनका आना बुरा लग रहा था। वो दुलारी से थोड़ी देर एकांत में गले मिलकर रोना चाहती थी, मथुरा से हाथ जोड़ कर कहना चाहती थी, मेरी खोज खबर लेते रहना, लेकिन इस भड़बड़ में उसको इन बातों का मौका ही न मिला। मथुरा और दुलारी दोनों गाड़ी में जा बैठे, प्यारी द्वार पर रोती खड़ी रह गई। कई दिन तक प्यारी मूर्छित सी पड़ी रही, न घर से निकली, न चूल्हा जलाया, न हाथ मुंह धोया। उसका हलवाहा जोखू बार बार आकर कहता, मालकिन उठो, मुंह हाथ धो, कुछ खाओ पियो, कब तक इस तरह पड़ी रहोगी। जोखू कामचोर बातूनी और नशेबाज था। प्यारी उसे बार बार डांटती रहती थी, दो एक बार उसे निकाल भी चुकी थी, पर मथुरा के आग्रह से फिर रख लिया था। आज भी जोखू की सहानुभूति भरी बातें सुनकर प्यारी झुंझलाती, ये काम करने क्यों नहीं जाता, यहाँ मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, मगर उसे झिड़क देने को जीना चाहता था। उसे इस समय सहानुभूति की भूख थी। धीरे धीरे क्षोभ का वेग कम हुआ, जीवन के व्यापार होने लगे। अब खेती का सारा भार प्यारी पर था, सारे काम पूर्ववत चलने लगे। उधर मथुरा के चिट्ठी पत्री न भेजने से उसके अभिमान को और भी उत्तेजना मिली। घर में तो अब विशेष कोई काम रहा नहीं, प्यारी सारे दिन खेती बाड़ी के काम में लगी रहती। प्यारी की मनोवृत्तियों में भी एक विचित्र परिवर्तन आ गया, अब वो साफ सुथरे कपड़े पहनती और मांग चोटी की ओर से भी उदासीन न रहती, आभूषणों में भी रुचि हुई। रुपये हाथ में आते ही उसने अपने गिरवी गहने छुड़ाए और भोजन भी संयम से करने लगी। एक दिन जोखू हाट से लौटा तो अंधेरा हो गया था। प्यारी ने पूछा, अब तक वहाँ क्या करता रहा। जोखू ने कहा, 4 क्यारियाँ बच रही थी, मैंने सोचा 10 मोट और खींच दूँ, कल के झंझट को हम रखे। जोखू कुछ दिनों से काम में मन लगाने लगा था, जब तक मालिक उसके सिर पर सवार रहते थे वो हील बहाने करता था, अब सब कुछ उसके हाथ में था। प्यारी सारे दिन हार में थोड़ी ही रह सकती थी, इसलिए अब इसमें जिम्मेदारी आ गई थी। प्यारी ने लोटे का पानी रखते हुए कहा, चलो अब हाथ मुँह धो लो, आदमी जान रखकर काम करता है, हाय हाय करने से कुछ नहीं होता, खेत का काम

0: पिताजी ने कहना जरूरी था। कल भी होता क्या जल्दी थी आखिर? जोखू ने समझा प्यारी बिगड़ रही है, फिर कर बोला, मालकिन तुम दाएं बाएं दोनों ओर चलती हो, जो बात नहीं समझती हो उसमें आखिर क्यों कूदती हो? आज बड़ी मुश्किल से कुआं खाली हुआ है, सवेरे मैं न पहुँचता तो कोई और आकर उसे छेक न लेता, फिर अठवारे तक राह देखनी पड़ती, तब तक तो सारी ऊख विदा हो जाती। हाँ प्यारी उसकी सरलता पर हंस कर बोली, अरे तो मैं तुझे कह थोड़ी न रही हूँ पागल, अरे मैं तो कहती हूँ जान रख कर काम किया करो, अरे कहीं बीमार न पड़ जाओ, बीमार पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ जोखू बोला, कौन बीमार पड़ जाएगा, मैं 20 साल में कभी सिर तक दुखा नहीं, आगे की नहीं जानता, कहो रात भर में काम करता रहूं। प्यारी बोली, मैं क्या जानू, तुम ही अकेले दिन बैठे रहते थे और पूछा जाता था तो कहते थे जुर आ गया था, पेट में दर्द था। हाँ जो खुझे हुआ बोला, अरे वो बातें तब की पत्ती, जब मालिक लोग चाहते थे कि इसे टी से डाले, अब तो जानता हूँ मेरे ही माते है सब, मैं न करूँगा तो सब चौपट हो जाएगा। प्यारी बोली, मैं क्या देखभाल नहीं करती? जोखू ने जवाब दिया, तुम बहुत करोगी, दो बेर चली जाओगी, सारे दिन तो वहाँ बैठी नहीं रह सकती ना। प्यारी को उसके निष्कपट व्यवहार ने मुक्त कर लिया, बोली, तुम इतने रात के चूल्हा जलाओगे, कोई सगाई क्यों नहीं कर लेते? जोखू ने मुंह धोते हुए कहा, मालकिन तुम भी खूब कहती हो, अपने पेट भर को तो होता नहीं, सगाई कर लो। हाँ प्यारी बोली, आज मेरी रसोई में खाऊंगा, देखो कितना खाते हो। जोखू ने पुलकित होकर कहा, अरे नहीं मालकिन नहीं, तुम बनाते बनाते थक जाओगी। हाँ आज रात शेर की 2 रोटी बनाकर खिला दो तो खा लो। प्यारी बोली, मैं तो तुम्हें आज फुलके खिलाऊंगी, फुलके। जोखू बोला, हाँ तब तो सारी रात खाते ही बीत जाएगी। प्यारी बोली, बको मत चटपटा कर बैठ जाओ। जोखू बोला, जरा बैलों को पानी देता हूँ तो बैठो। जोखू और प्यारी बैठी नहीं हुई थी। प्यारी ने कहा, मैं कहती हूँ धान रोपने की कोई जरूरत नहीं, झड़ी लग जाए तो खेत डूब जाए, बरखा बंद हो जाए तो खेत सूख जाए, ज्वार बाजरा सन अरहर सब तो है, धान न सही। जोखू ने अपने विशाल कंधे पर फाड़ा रखते हुए कहा, जब सबका होगा तो मेरा भी होगा, सबका डूब जाएगा तो मेरा भी डूब जाएगा, मैं क्यों किसी से पीछे रहूं? बाबा के जमाने में 5 बीघे से कम नहीं रोपा जाता था, बिरजू भैया ने उसमें 1-2 बीघे और बढ़ा दिए, मथुरा ने भी थोड़ा बहुत हर साल रोपा, तो मैं क्या सबसे गया बीता हूँ, मैं 5 बीघे से कम में लगाऊंगा। हाँ अरे तब घर के 2 जवान काम करने वाले थे, मैं अकेला उन दोनों के बराबर खाता हूँ, दोनों के बराबर काम क्यों करूंगा, चल झूठा कहेगा। कहते थे 2 शेर खाता हूँ, 4 शेर खाता हूँ, 8 शेर में रह गए, 1 दिन तौलो मालकिन तब मालूम होगा। अरे हाँ तौला है, बड़े खाने वाले, मैं कह देती हूँ धान न रोपो, हाँ मजूर मिलेंगे नहीं, अकेले हलकान होना पड़ेगा तुम्हें। अरे तुम्हारी बला से मैं ही हलकान होऊंगा ना, ये दे किस दिन काम आएगी बला। प्यारी ने उसके कंधे पर से फावड़ा ले लिया और बोली, तुम पहले दिन से पहले रात तक ताल में रहोगे और अकेले मेरा जी उबेगा। जोखू को जी उबने का अनुभव न था, कोई काम न हो तो आदमी पढ़ कर सो रहे, जी के उबे भला। बोला, जी उबे तो सो रहना, मैं घर रहूंगा तब तो और जी उबेगा, मैं खाली बैठता हूँ तो बार बार खाने की सोचती है, बातों में देर हो रही है और बादल घिरे आ रहे हैं। प्यारी ने हार कर कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, कल से जाना, आज बैठो यही। जोखू ने मानो बंधन में पड़ कर कहा, अच्छा ये लो बैठ गया, कहो क्या कहती हो। प्यारी ने विरोध करते हुए कहा, अरे कहना क्या है, मैं पूछती हूँ अपनी सगाई क्यों नहीं कर लेते, अकेली मरती हूँ अब 1 से 2 हो जाएंगे। जोखू शर्माता हुआ बोला, तुमने फिर वही बेबात की बात छेड़ दी मालकिन, अरे किससे सगाई कर लूँ यहाँ, मैं ऐसी मेहरिया लेकर क्या करूँगा जो बहनों के लिए मेरी जान खाती रहे। प्यारी बोली, ये तो तुमने बड़ी कड़ी शर्त लगाई, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो गहने भी न चाहे। जोखू बोला, ये मैं थोड़ी ही कहता हूँ कि वो दीन होना चाहे। हाँ मेरी जान न खाए, तुमने तो कभी गहनों के लिए हट ही न किया, बल्कि अपने सारे गहने दूसरों के ऊपर लगा दिए। प्यारी के कपोलों पर हल्का सा रंग आ गया। बोली, अच्छा और क्या चाहते हो? जोखू बोला, अभी मैं कहने लगूंगा तो बिगड़ जाओगी। प्यारी की आंखों में लज्जा की एक रेखा नजर आई। बोली, बिगड़ने की बात कहोगे तो जरूर बिगड़ूंगी, तो फिर मैं न कहूंगा। प्यारी ने उसे पीछे की ओर ढकेलते हुए कहा, कहोगे कैसे नहीं, मैं तो कहला के छोड़ूंगी। जोखू बोला, मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारी तरह हो, ऐसी ही गंभीर हो, ऐसी ही बातचीत में चतुर हो, ऐसा ही अच्छा खाने पकाती हो, ऐसी ही किफायती हो, ऐसी ही हंसमुख हो। बस ऐसी औरत मिलेगी तो सगाई करूँगा, नहीं तो इसी तरह पड़ा रहूँगा। प्यारी का मुख लज्जा से आरक्त हो गया। उसने पीछे हटकर कहा, तुम बड़े निकट हो, हंसी हंसी में तुम सब कुछ कह गए, सब कुछ। कहानी स्वामिनी का प्रथम प्रकाशन हिंदी में मासिक विशाल भारत सितंबर 1931 में प्रकाशित, मानसरोवर भाग एक में संकलित, उर्दू रूप मालकिन शीर्षक से उर्दू कहानी संग्रह वारदात में संकलित।
1: मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्वामिनी का तीसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। सुनो कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत वाचक स्वर ममता सिंह, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। सुनो कहानी।
2: ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रों बस कुछ ही पलों में।

0: अलका याग्निक, सोनू निगम और साथियों की आवाजें थी। फिल्म का नाम था धड़कन। इसे लिखा समीर ने और धुन बनाई थी नितिन श्रवण ने।
1: ये है विविध भारती। विविध भारती देश का रेडियो।
2: चाहे हो पुराने मधुर गाने।

मेरी प्रियंका सिंह, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, यह है फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप सुनने जा रहे हैं। सर अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों के गीत रचना समीर की और संगीत ए आर रहमान का।

वसीम तो ज्यादा मैंने स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रौबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट देने को पढ़ नहीं दिया। नसीम ने कहा वो तो मैं हूँ ना दासू, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी तोड़ी चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूँ। मैं कामना करती हूँ कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
2: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
2: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की

0: वजह से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
1: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दिमागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अभ्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीडॉन न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीडॉन के टॉक लाइन नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।

0: से वो भी तुम्हारा ठिकाना होगी और दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार है। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेकिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
2: परीक्षा के सुरक्षित पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों समन्वयकों पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सत्यान अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार के परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के जो महत्वपूर्ण आधार है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ रोजगार ही नहीं बनी बल्कि निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0

मोड और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियाँ कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में नए स्टार्टअप की संख्या 2014 में केवल एक से बढ़कर 800 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया।

0: की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कर रहे हैं, जैसे क्लाइंट लॉन्च व्हीकल ऑब्जर्वेशन, ऑटोनॉमस सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में

समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू नदी को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारम्भ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त

0: योग दिवस मनाया जाएगा। इस साल विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। आखिर क्या है योग? ये ऐसी प्राचीन भारतीय विद्या है जिसने पूरी दुनिया को ये सिखाया है कि सांसों को नियंत्रण के माध्यम से हम अपने विचार और जीवन को किस प्रकार संतुलित कर सकते हैं। विश्व भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को भी प्रमाण कर रही है। योग दिवस 2026 और योग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मुख्य अतिथि मौजूद हैं। मैं स्वागत करती हूँ केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी का। सर, आकाशवाणी आपको सबसे पहले मैं आपसे इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग के बारे में जानना चाहूंगी। इस थीम को चुनने के पीछे क्या विचार था?
1: अभी इस साल जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है उसकी थीम बहुत ही जोर की सोच है।

0: कृष्ण के घर में हमने बात किया है कि एक दिन योग करने की ये नहीं है, योग हर दिन करना चाहिए। एक दिन के पीछे का मतलब है कि बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहो।
1: आज विश्व भर में जो वैज्ञानिक है और चिकित्सा समुदाय है वो योग की हेल्दी एजिंग में काफी योगदान दे रहे हैं और इसको लेकर

तो हम सोचने भाई यदि हमको आर्थिक मदद भी करते हैं रिसर्च करने के लिए, तो उस समय के ऊपर रिसर्च की वजह से ये लोगों को प्रॉब्लम हो गया कि होगा, और उस समय लोगों ने खुद अनुभव लिया कोरोना के समय, जब कोरोना जैसी महामारी आई तब कोई दवा टैबलेट नहीं थी, वैक्सीन भी नहीं था,

0: सभी ने
1: आपने इतने विस्तार में हमें समझाया योगा के बारे में। हर साल भी देश के अलग अलग भाग में योगा का मेन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मेन इवेंट कलकत्ता यानी कैलकटा में आयोजित किया जा रहा है। इस बड़े आयोजन के लिए किस प्रकार की तैयारियां चल रही है और इस बार के मुख्य कार्यक्रम में क्या विशेषताएं होंगी?

0: people can do what they can say. The center of the world will be promoted by the world. That's it. Both sides will put up to me, they will put up to me, they will put up to me, they
1: भारत वर्तमान में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपके अनुसार इस यात्रा में

0: जैसे कि हमने ट्यूशन कराते थे बच्चों के, अभी योगा क्लास सुनोगे बहुत सारे लोग वहां पर आपको बहुत फीस दे के एक घंटा योगा सीखने जाते हैं करने जाते हैं, क्योंकि हम लोग अकेले में घर में नहीं कर सकते, तो फिर एक रोजगार भी बढ़ गया। तो निश्चित रूप से देश के विकास में, देश की आर्थिक स्थिति बढ़ाने में योग का बहुत बड़ा योगदान रहा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, आपने योग दिवस 2026 के विभिन्न पहलुओं में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की और आपको भी योग दिवस की बहुत बहुत बधाई।
2: On the eve of the International Yoga Day, you are listening to an exclusive interview with

0: एडमिनिस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको

के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे निर्माता और निर्देशक पर जिसने अपनी फिल्मों में जिंदगी के यथार्थ को दिखाया।

बासु भट्टाचार्य का जन्म सन 1934 में कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार कासिम बाजार पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। बहुत बचपन में जब बासु भट्टाचार्य ने सत्यजीत रे की फिल्में देखी तो उनका फिल्मों से लगाव बढ़ गया। खास तौर पर 1956 में आई फिल्म अपराजितों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और उन्होंने ये तय कर लिया था कि जीवन में वो कुछ न कुछ तो ऐसा करेंगे कि फिल्मों में काम करने की स्थिति बन जाए।

सुब्बाचार्य जब मुंबई आए तो उनका मकसद था राज कपूर के साथ काम करना, क्योंकि आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था।

इत्तेफाक ये हुआ कि बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय की फिल्म टोली में एज असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हो गए। सन 1958 में आई मधुमती और सन 1960 में आई फिल्म सुजाता में बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय के सहायक निर्देशक रहे।

जाहिर है कि अब वासु भट्टाचार्य का फिल्म करियर धीरे धीरे अपनी दिशा ले रहा था। इसी बीच जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने फिल्म बनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने चुनी एक अनमोल कृति, हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार हरीश्वर नाथ रेणु की मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम।

दूसरी कसम का निर्माण शुरू हुआ और इसके लिए बासु भट्टाचार्य को बतौर निर्देशक चुना गया, जो बासु भट्टाचार्य राज कपूर के साथ फिल्में बनाना सीखना चाहते थे। आखिरकार उनकी फिल्म यात्रा एक तरह से राज कपूर के साथ ही शुरू हुई और उन्होंने फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर को डायरेक्ट किया। तीसरी कसम के बनने में कई परेशानियां आई। इस फिल्म का निर्माण एक तरह से संघर्षों से भरा रहा था, पर ये फिल्म हिंदी की एक कालजयी फिल्म साबित हुई। फिल्म तीसरी कसम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ था।

देश विदेश में फिल्म तीसरी कसम की बहुत ज्यादा तारीफ हुई। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने सन 1966 में ही एक और फिल्म बनाई, उसकी कहानी। मुख्य कलाकार थे अंजू महेंद्रू और दीना पाठक।

वासु भट्टाचार्य को ये समझ में आ गया था कि उनकी एक खास तरह की शैली है, फिल्में बनाने का उनका अपना एक खास मुहावरा है, और इसीलिए वासु भट्टाचार्य ने अपनी तरह का सिनेमा बनाया। मुंबई में फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए उन्होंने अपनी फिल्म बनाई अनुभव। साल 1971 में आई फिल्म अनुभव के मुख्य सितारे थे संजीव कुमार और तनुजा। वासु भट्टाचार्य की खासियत रही है वैवाहिक रिश्तों की जटिलता, और वैवाहिक रिश्तों के तनाव पर वो बहुत बारीक काम अपनी फिल्मों में करते रहे हैं। फिल्मों के जानकार ये कहते हैं कि वासु भट्टाचार्य ने जीवन में वैवाहिक संबंधों की पड़ताल पर एक ट्रायोलॉजी बनाई है, और 1971 में आई फिल्म अनुभव इसी ट्रायोलॉजी का यानी इस फिल्म त्रयी का पहला हिस्सा साबित हुई।

अनुभव के गीत गुलजार ने रचे और इसका संगीत कनूर रॉय का था। गीता दत्त की आवाज में इस फिल्म के गाने जैसे दिल को चीर डालते हैं।

सन 1972 में फिल्म अनुभव को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने एक फिल्म बनानी शुरू की डाकू, पर वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई। अनुभव से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में बासु भट्टाचार्य संजीव कुमार की बजाय इस फिल्म में प्राण को लेना चाहते थे। उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, पर उन्हें लगा कि संजीव कुमार इस फिल्म के लिए बेहतरीन साबित होंगे और उनका ये विश्वास रंग लाया। फिल्म अनुभव एक बेमिसाल फिल्म मानी जाती है।

जैसा कि हमने कहा, बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता के एक अनमोल फिल्मकार हैं। अनुभव के बाद वैवाहिक संबंधों पर उनकी एक और फिल्म आई, आविष्कार। आविष्कार बड़े सितारों से सजी फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने काम किया था। एक बार फिर संगीतकार थे।

राजेश खन्ना को इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनय का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ था। राजेश खन्ना के करियर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्थक फिल्म मानी जाती है आविष्कार।

सन 1976 में बासु भट्टाचार्य ने फिल्म संगत बनानी चाही, हालांकि ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और सन 1979 में बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की पेचीदगी पर अपनी तीसरी फिल्म लेकर आए।

वैभव, आविष्कार और गृह प्रवेश, ये तीन ऐसी फिल्में हैं जिनके जरिए बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता की जांच करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं और उसके अलग अलग आयामों को सामने लाते हैं। संजीव कुमार उनके प्रिय सितारे थे, वही फिल्म गृह प्रवेश में नजर आए, साथ में शर्मिला टैगोर और सारिका। गुलजार ने इस फिल्म के गाने लिखे थे।

0: व्यासु भट्टाचार्य की फिल्में अपनी कहानी, अपनी जटिलता और अपने संगीत के लिए खास तौर पर याद की जाती हैं। व्यासु भट्टाचार्य ने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने जो फिल्में बनाई वो अपने आप में संपूर्ण हैं। वो ऐसी फिल्में हैं जो जीवन के यथार्थ को दर्शाती हैं। सन 1986 में उनकी एक फिल्म आई पंचवटी। पंचवटी में दीप्ति नवल और सुरेश ओबेरॉय मुख्य सितारे थे। सार्थक फिल्मों की दुनिया में फिल्म पंचवटी एक महत्वपूर्ण फिल्म के तौर पर याद की जाती है। यहाँ एक बात और आपको बता दें, सन 1979 में व्यासु भट्टाचार्य निर्माता बने और उन्होंने सई परांजपे की फिल्म प्रोड्यूस की स्पर्श, नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी की बेमिसाल अभिनय वाली फिल्म स्पर्श समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है।
1: सच आपकी संस्था से जो मैंने पाया है वो मैं कभी बता नहीं पाऊंगी।
2: आपका आना संस्था के लिए कितना फायदेमंद हुआ है ये मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत खुश है आजकल बच्चे, जैसे पहली बार उन्हें ममता मिली हो।
0: सन 1997 व्यासु भट्टाचार्य ने अपनी आखिरी फिल्म बनाई आस्था। मुख्य सितारे थे रेखा, ओमपुरी और दिनेश ठाकुर।

21 1997 को इस असार संसार को छोड़कर एक लंबी यात्रा पर चले गए बासु भट्टाचार्य। बासुदा इस दुनिया से विदा हो गए, पर रह गया उनका सिनेमा, उनका वो सिनेमा जो मानवीय संबंधों की पड़ताल करता है। ये वो सिनेमा है जो अपनी तरह से निराला है और इसीलिए लोग इन फिल्मों को खोज खोज कर देखते हैं और एक फिल्मकार के रूप में बासु भट्टाचार्य को याद करते हैं। वैसे बासु भट्टाचार्य का सबसे बड़ा योगदान कुछ फिल्म समीक्षक तीसरी कसम को मानते हैं। तो अब आपसे विदा लेने से पहले तीसरी कसम में कही गई ये सीख

0: मेरे भूत मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी निर्माता निर्देशक बासु भट्टाचार्य पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक करमेह का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार। In today's national program of music, we are going to broadcast a classical vocal performance by Dr. Vivek Karmahe.
0: सुरों के प्रति अगाध समर्पण और रागों की शुद्धता जब किसी साधक के कंठ से प्रस्फुटित होती है तो संगीत का एक नया अध्याय जन्म लेता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाशदीप पर ऐसा ही एक दैदीप्यमान नाम है डॉक्टर विवेक करमहे। 15 से अधिक वर्षों के अनवरत रियाज और देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों से आपने शास्त्रीय संगीत जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
1: When profound dedication of musical notes and the purity of ragas spring forth from the voice of a devotee practitioner, a new chapter in music is born. One such radiant name shining on the firmament of Indian classical music is Dr. Vivek Karmahe. With over 15 years of relentless practices and spellbinding performances on prestigious stages in India and abroad, he has left an indelible mark on the world of classical music.
0: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, विदुषी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर और श्रीमती कुमुदिनी मुंडकोर जैसे महान संगीत मनीषों के सानिध्य में इस कला की सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के ए ग्रेड प्राप्त कलाकार डॉक्टर विवेक जब तानसेन समारोह और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले डॉक्टर विवेक आज के दौर में शास्त्रीय गायन की एक प्रखर और प्रेरक आवाज है।
1: A gold medalist at both the undergraduate and postgraduate levels and honored with a doctorate in music, Dr. Vivek assimilated a subtle nuances of this art under tutelage of great musical maestros such as Padma Shri Pandit Ulhas Kashankar, Vidushi Girija Devi, Shri Omkar Dadarkar and Srimati Kumudini Mundukur. An A-grade artist of All India Radio, when Dr. Vivek showcases his art of historic stages like the Tansen Samaroh and Pandit Krishnarao Shankar Pandit Samaroh, the listeners are left utterly spellbound. Proudly flying the flag of Indian culture from Bhutan, Nepal and Sri Lanka to South Africa, Mauritius and United Arab Emirates. Dr. Vivek is a brilliant and inspiring voice of classical vocal music in today's era.
0: Dr. Vivek Karmahe अपनी गायन की शुरुआत राग श्री से कर रहे हैं। विलंबित रचना तिलवाला ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है वारी जाओ रे तुम पे। द्वित रचना तीन ताल में है जिसकी बोल है चलो रे भाई राम सिया दर्शन। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा।
1: डॉक्टर विवेक करमहे इज कमेंसिंग हिज रिसाइटल विद राग श्री। द विलंबित कंपोजिशन इज सेट टू तिलवाड़ा ताल विद द लिरिक्स वारे जाऊं रे तुम पे। द द्रुत कंपोजिशन इज इन तीन ताल विद द लिरिक्स चलो रे माई राम सिया दर्शन। Accompanying him on the harmonium is Ravindra Killedar and on tabla is Nishant Sharma.

0: आपने सुना डॉक्टर विवेक करवहे का गायन। डॉक्टर विवेक करवहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित तृष्णा एक ताल में है जिसके बोल है काम गत भई। दो तृष्णा भी एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Raga Shri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Raga Bageshwari.

0: सुहिनी से कर रहे हैं। मध्य में तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है देख देख मन ललचाई और दुप तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है रंग न डारो श्याम जी।
1: That was Dr. Vivek Karmahe's vocal rendition in Raag Bageshri. Dr. Vivek Karmahe is concluding his recital with Raag Sohini. The Madhyalay composition set to Tintal has the lyrics Dekh Dekh Man Lalachai. And the Drut composition set to Tintal has the lyrics Rang Na Daro Shyamji.

0: द्वारा प्रस्तुत ये था राग सोहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Raag Sohini presented by Dr. Vivek Karmahe. Accompanying him were Ravindra Killedar on harmonium and Nishant Sharma on tabla. This program was presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रेडियो वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर आपसे कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण माझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संकल्प के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूँ। मैं कामना करती हूँ कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जन

0: प्रगति का पुनः द्वार मिल रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तीसरी किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनियागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मेनवाती तालुकों में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रूपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बनी है। दरअसल विश्वास के विकास के जन कल्याण की विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुने सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रही है वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सृजना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही है सोनू सूद।
1: 12 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी को भागीदार बना

जो स्तंभ है उनकी पहचान की है, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारियां। तो इन चारों जो वर्ग है उनके सशक्तिकरण

0: महिलाओं की ही बात करना चाहूंगी। जिस तरह का विकास महिलाओं का हुआ है और जो सरकार का मूल मंत्र रहा है कि वुमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर हमें वुमेन्स हेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है उसकी ओर बढ़ना है, हमें बताया कि इन 12 वर्षों में कौन से ऐसे परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए लाए गए हैं जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं।
1: सोनू जी देखिए, महिला जो है वो कोई भी परिवार है, परिवार की दूरी महिला है। अगर एक अच्छे परिवार है वो एक अच्छे समाज को और एक अच्छा समाज

उसका भी हमला करते हैं। अगर महिला सशक्त है, अगर महिला समृद्ध, समृद्ध मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको समावेशी विकास करते हैं। अगर महिला उस तरह की है तो वो पूरे अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी और फिर राष्ट्र को। तो इसका मतलब धूरी जो है परिवार से लेकर राष्ट्र तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। भले ही आज से कुछ साल पहले तक महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पुरुषों को भी शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती जितना वो खुद सब मैनेज कर लेती है। आपने देखा होगा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हुई, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है पैसे को जोड़ने की और आत्मनिर्भरता का जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही, क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी ने जो ये सोचा, तो उसमें देखे दो तीन चीजें तो मैं कहूंगी कि जो सबसे अच्छी रही, एक है उज्ज्वला योजना और एक है हर घर नल हर घर जल। ये जो दो चीजें सुलभ हुई है महिलाओं को, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है। आपको लकड़ियां बनने जंगल में नहीं जाना और धुआं में काम नहीं करना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोचिए उसकी कितनी मेहनत कम हुई, खाना अच्छा बनेगा, वो भी खुद भी रिलैक्स रहेगी। दूसरा है, अगर हम देखें कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगह थी जहाँ पे महिलाओं की आधे से ज्यादा एनर्जी पानी लाने में भी लगती थी, तो ये जल मंत्रालय ने जो काम किया है, हर घर नल जो पहुंचाया है, हर घर जल पहुंचाया है, उसका भी बहुत लाभ हुआ। फिर आपने इनको कहा है कि जरूरी नहीं कि आप 10 से 5 की जॉब करने जाओ, अगर आपके घर के आसपास या अपने घर में बैठे आप क्रोशिया भी बुनते, आप स्वेटर भी बुनते, आपको सिलाई भी आती है, या आपके आसपास जैसे कि मखाना की खेती में आपने देखा होगा, मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनी है उन्हीं चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास बीए एमए की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए जिसमें कि लगभग 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई है, तो इस तरह की जो योजना। और दूसरा मुद्रा योजना जो है कि अगर अपने घर में मुझे कोई काम शुरू करना है, मुझे लगा कि मुझे एक सिलाई स्कूल खोलना है, मुझे लगा कि मुझे क्रोशिया सेंटर बनाना है अपने घर में, मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल है जो मुझे किसी स्कूल से नहीं अपनी फैमिली से ट्रेडिशनल मिली है, अगर मैं उसी को आगे विकसित कर, कौशल हुनर जो कि परंपरागत हमारे यहाँ आपने देखा कि कोई साड़ी बनाता है,

कि उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी और बुद्धा लोग जो मिले इससे भी उनका जो लाइफ है वो बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं, केजी टू पीजी जो है कि आप केजी से लेकर पीजी तक बच्चियां जो है वो पढ़ेंगी। और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण, आप देखेंगे कि कई राज्यों में तो ऐसा था कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं जैसे कि, तो अब देखिए वहाँ बेखौफ लड़कियां रात को 2-2.5 बजे तक भी आराम से घूम सकती है क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा। जब तक माँ और बेटे को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है तो बेटी बाहर काम करने उनको कोई जगह नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है।

0: तीन महीने से छह महीने किया, वो भी एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है महिला का।
1: बिल्कुल,
0: मातृत्व सुरक्षा योजना है, शिशु योजना है, इन सब योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान किया है, सुविधा दी है। मैं बात करी वो महिलाओं की जो की अभी तक

क्योंकि इस सरकार को यह अंत्योदय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी शुरू से ही भाजपा का ये मूल नियम है अंत्योदय अंत से उदय करना है। तो ये बहुत सी योजनाएं जो है सबसे वंचित वर्ग है वहां से शुरू

0: इमरान के लिए कि इमरान में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी बहुत है, उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको
1: जी।
0: ये पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था, और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी फील्ड में चले जाए, शिक्षा में चले जाए, खेल में चले जाए, हर फील्ड में वो काम कर सकते हैं, उनकी मर्जी है और सबके अपनी अपनी खासियत है। तो जो उनकी रुचि है, जो वो कर सकते हैं, उसमें अवसर कैसे दिए जाए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि युवाओं के लिए अवसर की ऐसी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं कि

रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे यूनिवर्सिटीज जो है मेडिकल कॉलेज की संख्या अगर सीटें बढ़ी है तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 380 के आसपास थी पहले आने के बाद 2014 खोली गई थी, वो लगभग 750 के आसपास हो गई है। 50-60 और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं जो सिटी जो

समोसा नहीं मिलता था, लोग जो है वो ओपन स्कूलिंग करते थे, ओपन स्कूलिंग अभी भी खुला है और वह एक बढ़िया विकल्प है कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम और कोई काम करते हुए भी हम ओपन स्कूलिंग से शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज संख्या लगभग 800 से बढ़ करके और 1300 हो गई है, वो डबल हो गई है, ये तो अभी भी हुआ है। और खेल में प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं, जो स्कीमें लाई हैं, जो युवा खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप देखेंगे ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाड खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, जो भारतीय युवा जो कहा जाता था कि खेलों के लिए भारत में युवाओं का जो शारीरिक संरचना है वो ऐसे खेलों में कम्पिटिशन में नहीं है, कहीं ना कहीं कम है, वो गलत थी बात। वो कहा जाता था खेलो इंडिया आयोजन, वो तो एक आयोजन है, लेकिन आप जो साइंस के सेंटर्स है, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स है, वहाँ पे युवाओं में जो इन्वेस्ट किया जा रहा है,

थोड़ा चेंज किया है। पहले ये वहां कोता था कि वहीं पे है, अप्लाई कहीं करो, जो कोर्सेज है वही करो, वो सब पुराने कोर्सेज हो गए हैं। अब उसको भी डिजाइन किया जा रहा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आईटीआई है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग है,

बनाई गई है डायरेक्टरी जिसमें कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ गैप है, कहाँ क्या डिमांड है, दे सकते हैं, तो एक बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ी

0: ऊपर जाती है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वो तो बिल्कुल विश्व युवाओं के लिए है
1: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल है।
0: उसने जो 10+2+3+2 का जो पूरा शिक्षा मॉडल था उसका शिकंजे से युवाओं को मुक्त कर दिया है।

0: कोई सिस्टम होगा, आपने एक साल पंद्रह एक साल के बाद आपकी जरूरत पड़ गई, घर में कोई समस्या हो गई, कुछ कहीं नौकरी आपको करनी पड़ रही है, या आपको कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आप वहाँ चले गए, आपको लगातार वो पढ़ने थे तो मेरा हो जाता। तो जो आपने एक साल पढ़ा हो दो साल पढ़ा हो वो आपके क्रेडिट में है, आप कर सकते हैं। तो सिलेबस शुरू में जो था जो समस्याएं थी कि बच्चा क्या करेगा, साइंस लेगा तो बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा, जब वो कहेगा मैथमेटिक्स लेगा, फिजिक्स लेगा, एक था कि आप सेट है उसी में है। अब कोई बच्चा जो है वो हिस्ट्री में पढ़ना चाहता है और मैथमेटिक्स में अच्छा हो, वो क्यों नहीं ले?
1: तो युवाओं के लिए बहुत सारे जो
0: जितने शिकंजे थे, जो अनंत संभावनाएं, जो अवसर उसके युवाओं के लिए है, वो अवसर के दरवाजे सरकार ने खोले हैं कि आप जो करना चाहे करो। युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि वो बाकी सब कुछ कर लेंगे, उनको करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल अवसर देने की जरूरत है। और पिछले 12 सालों में वो अवसर मैंने इतने गिनाए आपको कि जो जो करना चाहे, जहां करना चाहे, इस देश में अवसर है, आपको

0: 2014 में और अब वो बढ़कर जो संख्या है 2.2 लाख हो गई है। आपको लगता है कि ये जो इनोवेशन की स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है इन 12 वर्षों में?
1: बिल्कुल, इसे तो

0: ऐसे हो गए हैं जिनका टर्न ओवर जो आप देखें तो अच्छी अच्छी कंपनियों से बेहतर है वो, तो वो एक अवसर और स्टार्टअप में सरकार का जो मदद है
1: स्टार्टअप
0: इंडिया द्वारा कि उसमें आपको ये टैक्स में छूट है इसे। और इसमें आपके जो पुराने इंस्टीट्यूट है IIT है IIM उन्होंने जिस ढंग से उनको आगे

माजी में ज्यादातर वो काम कर रहे हैं, बाकी तो नए जो ब्रांचेस उसमें भी आ रहे हैं, उसमें आप देखिए कि पेटेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी। यानी कि जो हमारे यूथ जो कहीं रिसर्च में लगे हुए हैं, कुछ नई चीज ढूंढ रहे हैं, पहले पेटेंट नहीं होता था, पूरा पेटेंट के जो रजिस्ट्री जो पूरा मैकेनिज्म है वो चेंज किया जा रहा है। लाखों यूथ जो है वो अब नए पेटेंट के लिए हर साल लाखों अप्लाई हो रहे हैं और पेटेंट मिल रहा है। पेटेंट मिलने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई चीज, नए इनोवेशन का काम दे रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में यूथ के लिए उन्होंने, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, अगर आप रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसे आप भी बनना चाहते हैं तो वो

0: मैंने जो हम मिनिमम जो गारंटी सरकार देती थी कि हम खरीदेंगे तो कुछ फसलों पर थी, चावल था, गेहूं था, इनको फसलें थी, वो नहीं थी कि हम आपको खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे 12 सालों में तो जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर की कीमत, उसकी लगभग सेम है, 12 साल में नहीं बढ़ा है। सरकार को भी बढ़ रही है लेकिन वो लगभग 250-300 रुपए की बोरी जो 45 किलो की जो उर्वरक दी थी आज भी वही है। इसका मतलब कि जो कॉस्ट आपका है वो उर्वरक वाला वो नहीं बढ़ा है, वो सेम है। दूसरा कि पूरे देश में बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों में कहते हैं कि एवरेज 22-23 घंटे बिजली आज है पानी नहीं होती। और किसान अधिकांश जो राज्य है उसमें किसानों की बिजली फ्री है, तो सिंचाई के लिए आपको अलग से कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है। और आपके खाद्यान्न की कीमत अगर आप देखें तो कुछ बढ़ा ही है। दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो सहायता दे रही है 2,000 रुपए का,
1: 3,000 प्रति वर्ष या 3 इंस्टॉलमेंट
0: में 2,000 के, 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 के हैं। तो वो उसका अगर आप समय देखेंगे कि वो उस वक्त दिया जाता है,

0: पैसे में होते हैं उनके लिए उस वक्त उनको पैसे दिए जाते हैं
1: जी,
0: वो मदद उनको दी जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है कि लाख रुपए तक अगर आपको खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में कुछ नहीं लेना है आपको, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। जो फिशरीज का जो अलग से दृष्टि बना करके उनका जो ब्लू रेवल्यूशन जो उनका किया है और जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, आप देखिए हॉर्टिकल्चर में जो भारत का एक्सपोर्ट जो मेनली जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट जो कृषि क्षेत्र में वो उसमें दिख रहा है, उसमें 10% 12% का ग्रोथ है, वो एक बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा है। तो किसान एज ए होल कह रहे हैं आप, बड़ा परिवर्तन हुआ है। और किसान अगर आप कहते हैं ना सिर्फ, तो किसान नहीं होता है सिर्फ, उसके घर में महिलाएं भी, महिलाओं का जो सेल्फ है वो बन रहा है,
1: जैसा भी सरजना जी बता
0: रही है तो वो भी तो वही बन रही है। जब 20 करोड़ महिलाएं हैं वो भी तो किसान परिवार से जाती है, वो किसान परिवार से सख्त हो रहा है। जब मार्केट का डेवलपमेंट जो आपकी सड़कें बन रही है तो उन सड़कों के बनने से किसान का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आसानी से पहुंच रहा है। और आपने आज 20-25 फसलें ऐसी होती हैं जिनकी गारंटी सरकार दे रही है खरीदने के लिए कि हम उसको खरीदेंगे, आप उपजाओ और गारंटी है इस कीमत पर हम करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इधर भावांतर योजना शुरू कर दी है कि अगर आपको मार्केट से कम कीमत आपको बेचना पड़ रहा है, मार्केट में बेच रहे हैं, तो उस कीमत का पैसा हम आपको देंगे, यानी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अन्नदाता है उसके लिए उन्होंने खोला है, सारी चीजें व्यवस्था हुई है। जो श्री

0: इसलिए किसानों पे जो इनपुट कॉस्ट है उनके लिए जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जो खर्चे हैं सरकार ने उसे कम किया है, उनकी उत्पादकता बढ़ाई है और अब कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अलग से बना करके उनका कैसे वो जो फार्मर का जो प्राथमिक जो है वो संघ बने कोऑपरेटिव बने उसकी 1 लाख के आसपास हो गया है। उसमें है कि 2-3 लाख कोऑपरेटिव बनाना है, कोऑपरेटिव बना करके से कोऑपरेटिव नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करे, कैसे वो विदेश में एक्सपोर्ट हो, इसके लिए अलग से प्रॉपर्टी बना दिया है।
1: बिल्कुल,
0: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त, किसान सशक्त मतलब बेसशक्त।
1: बिल्कुल संजना जी, अगर आपके पास आए, जैसा कि अभी मीनू जी कह रहे थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो सारे चारों स्तंभ है ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, अगर हम खासतौर से वंचितों की बात करें जिन्हें हम मार्जिनलाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, उनके

0: पढ़ा करना।
1: जब हमारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं जिनको पहले आदिवासी बोला जाता है, जनजाति जैसे हैं, तो इनके लिए आप देखेंगे जो उनके हीरो रहे हैं बिरसा मुंडा है और बहुत सारे, उन सबको इन्होंने निकाला और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के नाम। फिर आदि मेले लगने शुरू हुए और एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, उसका नाम है एकलव्य स्कूल, कि जितने ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पा रहे तो आप उनको बोर्डिंग स्कूल है ये, उसमें आप उनको पूरी तरह से एक आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं। दूसरा जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे जल वन के रक्षक और संस्कृति के रक्षक सबसे ज्यादा वो है। हम जो पढ़े लिखे शहरी हैं हम पर्यावरण की इतनी रक्षा नहीं कर सकते जितना वो लोग करते हैं, तो उनके लिए जो वन धन योजना है उससे बहुत लाभ है। उनको कहीं नहीं जाना, नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं देना, क्योंकि उन लोगों को ये भी मालूम है कि

बाद कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी, तो वो लोग प्रकृति के साथ सहचर है प्रकृति के। ये जो मंत्रालय है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, तो ये भी आप देखिए कि वैसे तो अटल जी के समय में बने थे, लेकिन अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए और ये खेलने में बहुत अच्छी है। हॉकी में है, स्पेशली तीरंदाजी में, कुश्ती में, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। इनके लिए बोर्डिंग स्कूल है, इनके लिए कोचेस दिए गए हैं, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और जिस एरिया में जो चीज ज्यादा जो पैदावार हो रही है, अब देखिए कि जैसे मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया, पहले तो नहीं था। दूसरी बात, खाली मखाना बोर्ड बना देने से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग है उनकी, फिर उनके प्रोडक्ट की कीमत है, फिर उनके प्रोडक्ट को देश में और विदेश में सब जगह पे उनको लंच मिले, ई कॉमर्स

0: बार मखाना लेके गए थे, इस बार वो ठेकुआ भी लेके गए। ठेकुआ भी आप मतलब उन्होंने सामान बनाया है पूरा ही अन्न उसको नाम दिया, जिसको मोटा अनाज सब बोलते थे, अब उसको देखिए मान श्री अन्न। और सब चीजों की कीमतें भी बढ़ गई उसकी वजह से, उसका किसान को लाभ हो रहा है। आज मखाने का आप रेट देखिए बाजार में, तो वो सारा आप सोचिए कि वो लाभ किसान को जा रहा है। और दूसरा जैसा अभी नीलू जी ने कहा कि खाली विकास समग्र होना चाहिए, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं मंडी तक ही नहीं पहुँच पाऊँ, तो मेरे पास मंडी तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, साधन नहीं है, तो मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा, क्योंकि ये तो पेरिशेबल आइटम जो होती है, तो उनको तुरंत बाजार चाहिए। तो ये भी बहुत सुविधा हुई है उसके लिए। और जब एमएसपी की बात होती है, तो एमएसपी अब कहा कि अब जाके किसान अपनी फसल, जरूरी नहीं कि किसी को भाई जिसको जो कीमत दे रहा है किसान को जितनी दे रहा है, और जिसके पास वो हो जाता है खरीद लीजिए जितना रेट है। तो ये विपक्ष जो कहता रहा, जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने एमएसपी की बात की, तो वो इससे चार कदम आगे चले। तो वंचित वर्ग में फिर है कि पढ़ाई है उनकी, पहले लोगों को लगता था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, अब किसी को नहीं लगता। सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़कियों को वर्दी है, लड़कियों को सब कुछ। और दूसरा अगर मान लीजिए अब जो असंगठित क्षेत्र था, जहाँ पर यह वंचित वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्किल, कोई एजुकेशन कुछ नहीं था, या उसके पास अपना पारंपरिक हुनर भी, कौशल भी नहीं है कोई, तो फिर कौशल विकास मंत्रालय भी खोला गया और कौशल विकसित किया जा रहा है। तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं, तो वो किसी मान लो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया जो नए चार लेबर कोड आए हैं, कि अगर कोई असंगठित क्षेत्र में है और काम कर रहा है, स्पेशली महिलाएं हैं, तो उनका वेजेस तय कर दिए गए हैं कि आप इससे कब वेज ये बिल्कुल काम नहीं करवाओ। तो ये आप देखिए कितनी अच्छी बात है। फिर दूसरा, अगर महिला आपके यहाँ काम कर रही है, तो आप उसको घर पहुंचाने की व्यवस्था भी करेंगे, फैक्ट्री आपकी करेगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। और सैनिटरी पैड पर देखिए, लड़कियों की जो सबसे बड़ी एक समस्या होती है, वैसे इसको कहा गया था कि ये बातचीत करने की, लेकिन ये भी एक रुपए में जन औषधि केंद्र में सैनिटरी नैपकिन मिल रहे हैं लड़कियों को, किशोरियों को, आप सोचिए महिलाओं को। तो ये भी बहुत, हम इसको एक अगर देखें तो एक तरह से ये भी एक सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम है। पिंक टॉयलेट्स हैं, तो महिलाओं के लिए अलग से अच्छे शौचालय बनाए गए हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको, अगर हम किसी मैनेजमेंट स्कूल की बुक देखें तो उसमें ये चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन पिछले 12 साल में जो इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच के समझ के जिनके ऊपर काम किया गया, पिछले 12 साल में अगर जनधन खाते खोलिए, डायरेक्ट जनधन उनको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कौशल विकसित किया गया। और हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो मैकॉले ने जो लाया था, उसने व्हाइट कॉलर जॉब को बहुत प्रेफरेंस दिया था, पर ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो सरकार की औद्योगिक नीतियां हैं, जो एमएसएमई आप देखिए ना, एमएसएमई सेक्टर में कितनी चीजें जो महिलाएं घर में बैठे बैठे शौक शौक में बना लेती हैं, जिनको ये शौक है, जिनके पास स्किल है, अपनी दादी नानी माँ से सीखा है, तो उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है। तो ये बहुत महिलाओं के सशक्तिकरण। दूसरा मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मातृत्व वंदन है, वो योजना कितनी अच्छी है, जो मातृ शिशु रक्षा योजना है, तो ऐसी योजनाएं पहले था कि
1: हाँ, एक्चुअली वो फिगर्स में दिखाई दे रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो अस्पतालों में हो रही है, उनका संख्या इतनी बढ़ गई है, 98% पर पहुंच गई है। और भी जो मोर्टैलिटी रेट है,
0: बेसिक मेरी जरूरत है वंचित वर्ग के लिए, हम बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया जा रहा है, ठीक है, उनको जो राशन दिया जाता है, एक बीपीएल जो है उससे बिलों में जो राशन मिलता है, ठीक है, वो आज नहीं तो कल कमाने लगेगा, वो भी बाकी समाज के साथ पेस मिलेगा, लेकिन जब उसको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही है, तो उसको उसके लिए नहीं स्ट्रगल करना, उसने उसका जीवन स्तर आगे बढ़ा। और कितने करोड़ लोग नीलू जी गरीबी रेखा से ऊपर उठे,
2: 25 करोड़
0: गरीबी रेखा से ऊपर उठे। और डिजिटल पेमेंट देखिए, आप सारी दुनिया आज हमसे सीखना चाहती है भारत,
1: और ये जो डिजिटलाइजेशन की बात कर रही है वो पूरे देश में है।
0: असद्दीन वाला भी कहता है जी यहाँ पर पेमेंट कर दो,
1: वो भी कहते हैं गोल गप्पे वाला।

0: थी। अब वहां के जो प्रोडक्ट है जो वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी और बिल्कुल एक संस्थागत रूप में सब कुछ लाया जा रहा है वहां पे, कि जो कैंप लगे थे नेशनल संस्था खत्म हो गई, तो जो सुरक्षा बलों के कैंप थे उसको सेवा केंद्र में बदला जा रहा है। अमित शाह जो गृहमंत्री है वो खुद हमारे साथ थे, उनके साथ भी था। वहां मैंने देखा कि जो जंगल के प्रोडक्ट है इमली बहुत होती है। अब इमली वहां पे वो तोड़ा और वो बिचौलिया सब खाते थे और जैसे जाता था। अब वो मशीनें लगी है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमली को कैसे आप पैकेजिंग करो, 500 ग्राम के एक किलो के छोटे पैकेजिंग बिल्कुल एकदम उसको, और उसके बीज हटने चाहिए, उसका ये होना चाहिए और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल, और उसकी बहुत डिमांड है। एक वहां महुआ बहुत होता है, श्री भी चुनते हैं। अब महुआ और बाकी जो श्री अन्न है मिला करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें, तो मार्केटिंग की एक सोच का अंतर आया है। सोच का अंतर ये है कि जब देश आजाद हुआ था तो हमने ये मान लिया था कि ये तो टैक्स है, ये जैसे है वैसे ही खुश है, इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी, इनको हमारे डेवलपमेंट, इनको हमारे स्कूल नहीं चाहिए, इनको हमारी बिल्डिंग नहीं चाहिए, इनको गाड़ी नहीं चाहिए, इनको जहाज नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ये जंगल में ही खुश है। अब आपने उनको छोड़ दिया तो उस जंगल में नक्सली घुस गए। अब ये चेंज आया है कि सारी सुविधाएं वो जंगल में रहे जहाँ है जैसे जी रहे रहे, लेकिन सारी सुविधाएं हम पहुंचाए और उनकी जो चीजें हैं वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट तक भी जाए, बाकी जगह भी जाए,
1: विकास अगर वो चाहे शिक्षा वहाँ पे पहुंची
0: है। मतलब ये स्कूल का है नाम लिया कि आदिवासी
1: बच्चे। आप जो सोच की बात कर रहे हैं नीरू जी, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो टर्मिनोलॉजी भी यूज की गई है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, कितनी खूबसूरत है कि रिकॉग्नाइज कर रही है सरकार की एस्पिरेशंस है उन लोगों की और उनको पूरा करने के लिए ये पॉलिसी मेजर्स उठाया
0: है। वो यही है कि जब आप सोशली देखते हो कि जिले है तो कौन कौन से जिले देश में जो है वो पिछड़े, परंपरागत पिछड़े राज्य की बात, लेकिन अगर आप देखोगे केरल में भी तो घरों कहें कि वहाँ बहुत साक्षरता है, वहाँ महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये है, तमाम चीजें हैं, लेकिन

जगह पीछे छूट गए हैं वो कैंटीन में डब्बे में छूटे हैं, वहां क्या करने की जरूरत है। अब वो जब हो गया तो जिले के भीतर ब्लॉक है तो वो 500 ब्लॉक के अलग चल पड़े हैं वहां पे। यानी कि जब समग्र और समेकित विकास की आप बात सोचते हैं कि अंत्योदय जो हमने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ये जाता है कि कोई छूटे न पीछे, ये जब आपकी सोच होती है तो जितने लोग छूटे हुए हैं सबको आप चुनते क्यों छूट गया, क्या करने क्या हम लगाए कि यहाँ पे आ जाए, वो चीजें हो रही है। सर जगह

0: समझे कि हम अपनी परंपराओं को अपने ट्रेडिशंस को बचाते हुए विकास की राह पर चले। ऐसा विकास नहीं है जो हमें हमारी जड़ों से अलग कर दे। तो हमारी जड़ों से जोड़ने का जो विकास है वो ये सोच बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी जड़ से उखड़ कर कहीं बहुत उन्नति करती हूँ अपने समाज से अपने रीति रिवाज से अपनी परंपराओं से तो वो विकास एक दिन जाकर मुझे बिल्कुल बहुत दुखी करेगा। लेकिन मैं अपनी जड़ों से भी जुड़ू अपनी परंपरा से अपनी संस्कृति से और इसके साथ मेरा विकास होगा। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यूनेस्को धरोहर में अब हमारे टेंजिबल और इनटेंजिबल कितनी सारी चीजें आ गई। आप सोचिए हमारा गरबा हमारी दुर्गा पूजा हमारी दिवाली हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होंगी। और एक और सोचिए पर्यावरण की दृष्टि में रामेश्वर जो आर्द्रभूमि जिनको हम बोलते हैं वो 100 होने वाली है। 99 तो हो ही चुकी है 100 हो गई। और ये सब चीजें युवाओं को प्रेरित करती है। हालांकि रामेश्वर लेक जो है पहले हमारे पास 13 या 14 थी अब आप देखिए कितनी हो गई। तो ये समग्र विकास जो है ना विद मेरे विरासत के साथ तो ये एक बहुत साल की उपलब्धि है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सर्जना जी नीलू जी आप आए और आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि जो 4 स्तंभ है जो माने गए हैं वर्तमान सरकार द्वारा विकास के गरीब युवा अन्नदाता और नारी उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है पिछले 12 सालों में और आगे भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
0: सोनू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। 12 साल विश्वास के विकास

0: वरिष्ठ पत्रकार नीलरंजन और संजना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, नीलाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: हमारा समाचार विभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष श्रेणी आप सुन रहे थे। आज मैं विषय होता हूँ संस्कृति। कार्यक्रम हमारा दिल्ली केन्द्र पर प्रसारित करवामां आव्यो।